FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 5, तदनुसार 26 जून ईस्वी सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 मिनट हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। प्रातः के 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. He will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi today. The meeting, being organized by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on Narcotics Control 2026-2029, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. National Testing Agency, NTA, has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on 21st of this month. The NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Further, the NTA has opened a portal for candidates who appeared for the re-exam to confirm and update their bank account details for fee refunds. The deadline to update bank details is 30th of this month. Venezuela's National Assembly President George Rodriguez has announced that the death toll from two powerful earthquakes has risen to 188, with 1,520 others injured and 200 still trapped. Mr. Rodriguez stated that at least 2,927 families lost their homes after powerful back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes struck around 160 kilometers west of the capital, Caracas. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. For India, Radha Yadav picked up 3, while Sri Charani took 2 wickets. In reply, India comfortably overhauled the target, losing 5 wickets in 16.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गाय कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में।

कार्यक्रम का आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के युगल सर में ये भक्ति गीत।

इस भक्ति गीत के साथ ही समर्पण का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगी रीना मिश्रा। सुबह 7 बजे समय होगा कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। 8:30 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। माटी की महक लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। कलाकार होंगे जॉर्ज नाग एवं साथी। 9 बजे विविधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन का श्रोता आनंद लेंगे 9:30 पर। 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। 10:30 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से 2:55 पर। 3 बजे से पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 4 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम पुनः प्रसारित किए जाएंगे 4:02 पर। शाम 5 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 5:02 पर आकाशवाणी चयभाषा से शेष कार्यक्रमों की विवरण दी जाएगी।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे गुलदस्ता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे एक ही गीतकार के लिखे चंद फिल्मी गीत। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

हो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:02 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया। 7 बजे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा।

रात के 8 बजे हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात के 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 बजे आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुन सकेंगे रात के 10:30 पर। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं रीना मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी रीना मिश्रा। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

जो हर चयबसा कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं, कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म का नाम है अय्याश, स्वर है येसुदास का।

जोहार चाईबासा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल सर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सौतन की बेटी, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

0: आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हत्तो तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात होते अखन बात हो जा है
6: नितुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भुरुपा सेना करना ऐसे दुख रहे ना अन्य यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा निका
7: अन्य नितुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो मैं लड़ाई चलाओ तो मैं दूर दूर गई यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेरे में या
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेकर ना लेंगे जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आ गए बेटा
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: जोहार चयबासा कार्यक्रम में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में हीर रांझा फिल्म का ये गीत।

दो दिलों की दास्तां। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की।

कार्यक्रम में आइए, अब सुनते हैं राम लखन फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज, अनुराधा फोटवाल और नितिन मुकेश की।

अमृत फिल्म के इस गाने के साथ ही श्रोताओं, जोहार चैबासा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चैबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
7: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
3: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
8: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं। एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on Narcotics Control 2026-2029, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. More from our correspondent.
11: The Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. The government has also decided to reduce the diversion of C3-C4 streams to LPG pool. During the West Asia crisis, the government had issued orders under the Essential Commodities Act requiring C3-C4 streams to be utilized exclusively for LPG production, diverting them from petrochemical and other downstream uses to augment domestic LPG production. The enhanced allocation of C3-C4 streams for non-LPG uses will be implemented while ensuring that the domestic LPG availability remains unaffected and aggregate indigenous LPG production is maintained at not less than 40 TMT per day. The government has directed oil marketing companies to continue maintaining comprehensive data on commercial and industrial LPG consumers to facilitate efficient planning and supply management. It has reiterated its commitment to expanding PNG connectivity. With Suparna, Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
10: The government has hiked the fees for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of July. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. In case of an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages, a sum of 5,000 rupees will be charged. For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages, the cost will be 6,000 rupees. The National Testing Agency or NTA has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. The NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Further, the NTA has opened a portal for candidates who appeared for the re-exam to confirm and update their bank account details for fee refunds. The deadline to update the bank details is the 30th of this month. The Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in different parts of the country today. The day marks the martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Hazrat Imam Hussein, and his companions who laid down their lives for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Tazia processions will be taken out on the occasion. The majlis or religious meetings highlighting the supreme sacrifice of Karbala martyrs are also being organized. Elaborate security arrangements have been made on the occasion. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. Uttar Pradesh government has taken strict action in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case, with the first FIR registered against 8 named accused and other unidentified persons. The FIR was filed following recommendations by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of the Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station based on the written complaint of trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ram Shankar Mishra, Subhash Srivastav and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinu, along with other unidentified accused. Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat participated in New Delhi in the closing ceremony of year-long programs commemorating 50 years of the emergency yesterday. The event marked the culmination of a series of activities organized to remember the period and reaffirm democratic values. On the occasion, the Union Minister visited the long-lived democracy and digital district repository exhibitions. Addressing the gathering, Mr. Shekhawat stated that the program was dedicated to honoring the unsung heroes of the freedom struggle, strengthening constitutional democracy and celebrating India's cultural legacy.
7: 51 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को
12: 55 years ago on 25th June 1975 India witnessed one of the darkest night in the history of its democracy. It was night when an attempt was made to suppress the spirit of the constitution and undermine its values. The freedom guaranteed by the constitution, including citizens' liberty, freedom of expression and fundamental rights, were curtailed under the rule of an overly ambitious government.
10: The International Monetary Fund, IMF, has said that India continues to be a major driver of global economic growth despite the economic impact of the Iran conflict and higher energy prices. Addressing a regular IMF press briefing, Julie Kozak, director of IMF's communications department, said India's economy has remained resilient despite external headwinds supported by robust domestic demand. We have a report.
13: The International Monetary Fund said it continues to project India's economy to grow by 6.5% in fiscal year 2026-27, maintaining the upward revision made in April. Julie Kozak said the forecast reflected strong momentum carried over from last year and the reduction in US tariff rates, which helped cushion the impact of the global energy shock. Ms. Kozak also said India's economy had continued to outperform expectations during the first quarter of the calendar year.
14: India's economy has been growing robustly. And it has been supported particularly by very strong domestic demand within India. We had projected growth at 6.5% in fiscal year 26-27, and that was a slight upgrade. That was in April, and that was a slight upgrade compared to what we had had in January. So 6.5% is still quite strong growth. We see that there's strong momentum that has continued in the first quarter of this calendar year.
13: She further said the IMF viewed the recent ceasefire in the West Asia and progress towards reopening the Strait of Hormuz as positive developments for the global economy. She noted that oil prices have retreated from their peak but remained around 10% above pre-war levels, while some other commodity prices have also begun to ease. The IMF is expected to provide updated global economic projections on 8th of July. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
10: In Venezuela, death toll after two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, people could be heard calling for help from under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger shock of 7.5 magnitude, both occurring close to the surface, making destruction more severe. The country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. On to sports now. In the FIFA World Cup, Ecuador advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. Gonzalo Plata turned savior as a resilient Ecuador pulled off a stunning 2-1 come-from-behind victory against Germany. Earlier, Ivory Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory over Curaçao in Philadelphia today. Nicolas Pepe scored a dynamic double for Ivory Coast to end Curaçao's campaign on a disappointing note. Later, both Japan and Sweden stormed into the knockouts round as they played a 1-1 draw in the Group F clash at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champions Brazil in the round of 32. Meanwhile, Netherlands outclassed Tunisia 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a round of 32 clash with Morocco. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
15: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standard 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
10: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
16: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार.
17: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी. पहले मुख्य समाचार. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, 30 जून से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान. 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची. राज्यव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का समापन. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, नशा मुक्त और स्वस्थ झारखंड सरकार का लक्ष्य. हाईकोर्ट ने रांची स्थित रिम्स की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश. आज मनाया जा रहा है मुहर्रम. रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत राज्य भर में ताजिया जुलूस, मजलिस और करबला में होगा धार्मिक आयोजन. और मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में लू की आशंका, शेष 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी. और अब समाचार विस्तार से. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्ययोजना और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर गणना और इन्यूमिरेशन फॉर्म का वितरण करेंगे. सभी दावों और आपत्तियों के निष्पादन के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
18: 30 जून से 29 जुलाई तक कार्यक्रम के संबंध में चर्चा हुई, साथ में उनका भी सहयोग आकर्षित की गई थी ताकि वो इनोवेशन फेज के समय में साथ साथ में काम करने के समय कंकरेंट ऑडिट के माध्यम से पार्टिसिपेटिव मोड में पूरा तरफ से आपका बीएलए 2 का सहयोग में अच्छा से एक मतदाता सूची त्रुटि रहित निर्माण करने का सहयोग आग्रह किया गया था, वो भी आश्वासन दिया था.
17: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के दौरान फर्जी प्रमाण पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. उन्होंने पाकुड़ जिले में फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जन्म, जाति एवं अन्य दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के खुलासे से संबंधित समाचार का संज्ञान लेते हुए ऐसे मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. रांची के शौर्य सभागार में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध चलाए गए 15 दिवसीय राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन हुआ. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार नशा मुक्त और स्वस्थ झारखंड के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता, खेलकूद, काउंसलिंग और सहभागिता को आवश्यक बताया तथा उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई. एडमिशन और टेंडर घोटाले में सीआईडी की टीम द्वारा पूछताछ के बाद रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है. राज्य सरकार ने इनका इस्तीफा स्वीकार

0: और राज्य सरकार को मामले की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उद्घाटन करते हुए न्यायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने लोगों से साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की। वहीं सीआईडी की डीएसपी नेहा बाला सिंह ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वेबसाइट और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज देशभर में मनाया जा रहा है मुहर्रम। इस मौके पर मजलिस, ताजिया जुलूस और दुआओं का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से जुलूस मार्गों पर सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे पूर्व कल मुहर्रम के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची पुलिस ने मेन रोड पर फ्लैग मार्च और व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रांची में भारतीय जनता पार्टी महानगर जिला की ओर से संविधान हत्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी और लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय था और नई पीढ़ी को इससे परिचित कराना आवश्यक है। कार्यक्रम में मीसा कानून के तहत जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया।
1: देशवासी संविधान के हत्या दिवस के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि देश में आपातकाल के नाम से जो जुल्म ढाया गया था, संविधान को तार तार किया गया था और देशवासी ने आत्मसात किया था, उसकी हत्या करते हुए लोगों ने देखा।
0: धनबाद पुलिस ने फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से प्रिंस खान गिरोह के संपर्क में था और गिरोह के निर्देश पर काम कर रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि रंगदारी के विवाद में एक रेलवे ठेकेदार पर फायरिंग की साजिश रची जा रही थी।
2: टीम के द्वारा सूचना के अनुसार प्रॉपर तरीके से रेड किया गया है। उस रेड में हमको दो पिस्टल और 33 लाइव राउंड गोली बरामद हुआ है, तो साथ में इनका जो यूज हुआ मोबाइल भी मिला है। ये चार आइटम सीज करते हुए इनको विधिवत वहां पर अरेस्ट किए गए हैं।
0: मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अलनीनो के प्रभाव के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश कम देखने को मिलेगी।
3: आने वाले दिनों में एक दो दिनों में हीट वेव जैसी भी स्थिति रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा सा उमस है, फील लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा फील होगा। यही है कि 26 सेकेंड हाफ से थोड़ा सा स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि लास्ट जो जून का दो तीन दिन बचता है 28-29 तारीख से और पहला हफ्ता जुलाई में, वहाँ उम्मीद की जा रही है कि मानसून थोड़ा सा रिवाइव कुछ करेगा।
0: झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक बबलू कुमार को भारतीय कुश्ती संघ ने भारतीय अंडर 15 ग्रीको रोमन कुश्ती टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम 27 से 29 जून तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। बबलू कुमार की नियुक्ति से झारखंड के खेल जगत में उत्साह का माहौल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने वेनेजुएला में आए भूकंप से तबाही के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पारण परेड में शामिल होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पुलिसकर्मी के लिए बनेंगे अस्पताल व आवासीय विद्यालय। प्रभात खबर ने लिखा है, छापे के बाद रिम्स निदेशक का इस्तीफा, कहा अपराधी की तरह की गई पूछताछ। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में ठनके से 10 की मौत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुहर्रम जुलूस से लौट रही

ताश पार्टी पर चढ़ा ट्रक, 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, 30 जून से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। राज्यव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का समापन। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, नशा मुक्त और स्वास्थ्य झारखंड सरकार का लक्ष्य। हाईकोर्ट ने रांची स्थित रिम्स की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश। आज मनाया जा रहा है मुहर्रम। रांची जमशेदपुर धनपाद समेत राज्य भर में ताजिया जुलूस, मजलिस और करबला में होगा धार्मिक आयोजन। और मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में जताई लू की आशंका। शेष 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं संतोष महतो एवं साथी।

अभी आप सुन रहे थे कुरमाली लोकगीत। कलाकार थे संतोष महतो एवं साथी। इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महकअप यहीं समाप्त होता है। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं, आज के विविध कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है, जिसके बारे में इस कार्यक्रम में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी कि 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन और उनकी अवैध तस्करी से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। श्रोताओं, नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य की ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और देश के विकास को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस समस्या से हम सबको मिलकर लड़ना आवश्यक है। श्रोताओं, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के इतिहास की बात करें तो इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 में की थी। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जून को विश्वभर में जागरूकता अभियान, रैलियां, संगोष्ठियां, नाटक, पोस्टर, प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना है और उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। श्रोताओं, नशा एक ऐसी आदत है जिसमें व्यक्ति शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अफीम, हीरोइन, कोकीन तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है, जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनका जीवन प्रभावित होता है। नशे के कारण लोग गलत संगति और साथियों के दबाव में नशापान करने लगते हैं, जिससे तनाव, चिंता, अवसाद जैसी घटनाएं होने लगती हैं। श्रोताओं, बेरोजगारी और पारिवारिक समस्याओं के कारण भी लोग जीवन में नशे की आदत बना लेते हैं, जो कि भविष्य में बहुत ही

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नेहर में ना बले नव नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे हत्तो कहा तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: ये तुम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुरा मिना है
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
7: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस आज हम मना रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में आइए नशापान पर आधारित यह भेंट वार्ता सुनते हैं। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिवशंकर हांसदा और उनसे बातें कर रहे हैं रमेश दास।
8: श्रोताओं, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं नशापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हम मिल रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैवासा तथा कुपोषण उपचार केंद्र चैवासा के प्रभारी डॉक्टर शिवशंकर हांसदा जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जोहार।
9: जोहार आप।
8: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नशा क्या है।
9: नशा एक्चुअली शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, लेकिन नशा एक्चुअली इसके बृहद रूप में देखा जाए तो ये तंबाकू को भी नशा है और उसी के साथ हमारे जो अगल बगल या लोकल में जो मिलते हैं हमारे चावल से बने हुए या फिर पाम या ताड़ी जो बोलते हैं, ये सारे जो है उसके याद में आते हैं। जैसे अभी सुबह उठ के लोग जो पीते हैं चाय, वो भी एक तरह का नशा ही है। तो इस तरह से नशा के रूप अगर नशा का वर्गीकरण किया जाए तो बहुत सारा से लोग कहते हैं, मतलब जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं आप उसको नशा बोल सकते हैं।
8: अच्छा, ये नशे का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
9: जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। नशा एक्चुअली बोला जाए जैसे अभी चाय के लिए, तो चाय भी अगर आप पीते हैं तो इसको अगर आप समय से पीते हैं तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं इससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पीने लगेंगे सुबह 12 बजे सब या 4-5 बार पीते हैं तो ये भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेगा। उसी तरह से अगर अल्कोहल की बात करिएगा तो ये कम मात्रा में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसका आप मात्रा अधिक लेते हैं तो ये हमारे जैसे किताबी तौर पर बोला गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तो ये 15-20 साल के बाद जो है ना आपके लीवर को प्रॉब्लम करने लगेगा। इसको हम अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो ये खुद के लिए हानिकारक होगा प्लस समाज के लिए हानिकारक होगा। इसके साथ साथ जो है ना इसके जैसे खाने वालों के लिए या पीने वालों के लिए हम लोग देखते हैं जैसे बहुत ज़्यादा खाने के बाद ये उल्टी करने लगता है, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि खाने के बाद जो है लोग ये चोकिंग जैसा सिचुएशन होता है, मतलब ये जनरली लोग पीने के बाद जैसे जो पीने के साथ जो है ना कुछ नॉन वेज वगैरह यूज़ करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि उसके चलते जो है चॉकिंग जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जब लोग पीने लगते हैं तो शुरुआत के दौर में तो चूंकि कम मात्रा में पीने से एक्साइटमेंट आता है, उसके बाद जब जो

0: जैसे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इस दौरान जो है फिर लास्ट में जो है आपको जो है ना कोमा स्थिति आती है। तो शुरुआती दौर में जब पीने का जो एक्साइटमेंट वाला फेज होता है तो इसमें लोग जो है एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जैसे बाइक वाले चला रहे हैं तो उनको लगता है कि मैं स्पीड से नहीं चला रहा हूँ या बहुत ज़्यादा उनको नहीं पता चल पाता है, तो इसमें एक्सीडेंट होने की डर रहती है। और उसी तरह से जब वो चला रहे होते हैं तो खुद के लिए तो दिक्कत होता है लेकिन सामने वाले की गलती नहीं रहते हुए भी वो जो गलती करने पर मजबूर करते हैं। तो एक तरह से ये एक्सीडेंट वगैरह का जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो ये नशा के चलते ही बहुत ज़्यादा हम लोग एक्चुअली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी ये बोलते हैं एक्सीडेंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा होने लगे, कारण भी जो है ये नशा ही है। के बाद जैसे अभी स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो ये एक्चुअली एक तरह से डिप्रेशन के कभी शिकार लोग हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग पैथोलॉजिकली बोलते हैं ये डिलीरियम ट्रीमेंस की बात करते हैं। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा पीने वाले लोग धीरे धीरे करके जो है उसके आदि होने से क्या होते हैं कि ये मानसिक रूप से जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसी तरह से हम लोग पॉलीन्यूराइटिस बोलते हैं या फिर कोर्साकोफ साइकोसिस बोलते हैं, ये सारा जो है एक तरह से डिप्रेशन का ही रूप है। फिर नेक्स्ट है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा पीने वाले हैं तो उनको देखिएगा कि कभी कभी पीते पीते उल्टी करने लगते हैं, तो ये गले में भी एक तरह से जो है घाव हो जाता है जिसको हम लोग मैलोरी वेज सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। फिर चूंकि हम अभी कुपोषण उपचार केंद्र में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे कुपोषण का भी जिक्र करना ज़रूरी है। तो ये बड़ों में भी जो है ये जो बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उनमें खून की कमी आने लगती है, तो ऑटोमेटिक खान पान का जो प्रॉब्लम होता है तो उसमें शरीर में जो है जो ज़रूरत का चीज़ होता है वो नहीं हो पाता है, तो ये कुपोषण का शिकार भी होने लगता है। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है खान पान समय पे होता नहीं है, लोग उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये एक तरह से गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर का भी कारण बनता है। फिर वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जैसे हम लोग सुने होंगे पैनक्रियाटाइटिस, तो ये शरीर में जो है आपके एक जो हम लोग पैनक्रियाज है इसका अल्कोहल के चलते जो है ना असर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जो पेनफुल सिचुएशन देखा गया है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो ये इसके चलते लोगों को सुसाइड करते हुए देखा गया। पेन किलर का असर कभी नहीं भी हो सकता या सही जगह ट्रीटमेंट नहीं होने से मौत की सिचुएशन भी बनती है। उसी तरह से जो है हार्ट में भी असर होता है, हम लोग उसमें मायोकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं। और एक सिचुएशन जैसे हम लोग जानते हैं कि पीने वालों को लीवर का दिक्कत होता है, तो उसमें लीवर में भी एक्चुअली हाइपरलिपिडेमिया जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है, और उसमें एक्चुअली अल्बुमिन और ट्रांसफेरिन जैसे बोलते हैं उनका सिंथेसिस जो है ना कम होने लगता है, और एक अभी हार्ट अटैक वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, तो इन वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बोलते हैं ना उसके चलते हाइपरग्लाइसीमिया जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये जो है आपको ऑलरेडी जो तो ये हार्ट को प्रॉब्लम करता आने वाले समय में हार्ट अटैक वगैरह का सिचुएशन बनाता है। और आज के डेट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे यूरिक एसिड, आज के डेट में चूंकि खान पान तो हम लोग करते हैं लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने के चलते जो है ये हाइपर यूरिकेमिया का सिचुएशन भी क्रिएट करता है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ जो है शरीर को नुकसान ही करता है, फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है इसमें। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है एक जैसे कोई अल्कोहल पीने वाला जो आदमी होता है, एक मेडिकल टर्म हम लोग बोलते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी, इसमें कभी कभी पी करके जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक जो है एक ही पोस्चर में रह जाते हैं, तो उसमें जो है ना रेडियल नर्व ट्रंक जो है ना वो डैमेज हो जाता है, कंप्रेशन के चलते जो है उससे सुनापन आ जाता है, उसको हम लोग सैटरडे नाइट पॉलिसी बोलते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: ठीक है। तो उसी तरह से एक अल्कोहलिक ब्लैकआउट भी बोलते हैं जिसमें कि जो है पीने के बाद जो है ना लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता है, आपने अभी से पहले आपने क्या किया था नहीं किया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य के लिए तो इसका जो है असर बहुत ही ख़राब है।
1: एक बात और, हम जैसे आपने डिप्रेशन की बात तो की है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप कुछ विस्तृत थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि क्या नशे से बढ़ता है डिप्रेशन।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो नशा जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि डिलीरियम ट्रीमेंस हो गया, अल्कोहलिक पॉलीड्यूराइटिस एंड कोर्साकोफ साइकोसिस जो बोल रहे हैं, ये साइकोसिस ऑलरेडी जो है ये मानसिक विकार जैसे सिचुएशन ही है। तो इसमें होता क्या है कि जिनको जो है पीने का आदि है उनको अगर अचानक से बंद कर दीजिएगा तो उसमें जो है उनको रहा नहीं जाता, तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि उनको एक पागलपन जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। उसके बाद जो है ना उन लोगों में नींद की कमी आने लगती है, फिर उसके बाद बेचैनी होती है, फिर याददाश्त वगैरह कम होने लगता है। फिर इसमें कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि जैसे पीने वाले लोग हैं उनको पीना नहीं मिला तो इनको एक तरह से जो है ना भय जैसा सिचुएशन भी क्रिएट होता है।

0: और इसमें जैसे अभी डिप्रेशन की बात कर रहे थे, इसमें पीने वाला लोगों को ये एक टेंडेंसी होता है सुसाइड करने का, या फिर किसी को जो है वो मारने पीटने जैसे, या प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने जैसा जो ये सिचुएशन इनके द्वारा हो सकता है। तो उसी तरह से जैसे हम लोग कोसाकोप साइकोसिस से बात करते हैं, इसमें पेशेंट को जो है ना वीकनेस आने लगता है, फूड ड्रॉप वगैरह तो होता ही होता है, फिर उसको चाल चलन वगैरह देखिएगा तो चाल में भी उनका जो है नॉर्मल गेट जो होता है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है ना ब्रेन में भी इनका जो एक हम लोग जो बोलते हैं ओरिएंटेशन की बात है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है ना भूलने लगते हैं, और बातें जो है वो सच्चाई से दूर इस तरह से जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इनका जो मानसिक संतुलन एक तरह से बिगड़ जाता है। जी, तो ये सारा है इसमें। अल्टीमेटली ये डिप्रेशन की तरफ तो लेता ही लेता है, और अल्कोहल चूंकि ये CNS हम लोग जो बोलते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन है, तो ये एक अल्कोहल का हम लोग मानते ही है डिप्रेशन के रूप में।
1: सही। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे, खासकर अगर हम अभी के परिवेश में देखें तो खासकर युवाओं में ये नशापान एक फैशन बनता जा रहा है, इससे समाज या परिवार में क्या प्रभाव पड़ता है?
0: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चूंकि हम लोग आज यहाँ अपने ताओं को विशेषकर ये संदेश देना चाहेंगे, चूंकि आज के युवा का काम क्या है, युवा को एक्चुअली अपने समय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, भविष्य निर्माण की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग को जिस समय जो काम नहीं करना होता है, विशेषकर जैसे अभी पढ़ाई से दूर रह जा रहे हैं, तो लोग क्या है कि इसको नशा को जो है अपने साथी या उनके संगत में जा रहे हैं, तो नशा युवा के लिए तो बहुत ही खराब है। विशेष हमें जैसे देख रहे हैं बच्चे हमारे जो है नशा के चंगुल में फंसने से जो है उनका पढ़ाई से तो नाता टूट रहा है। एक परिवार में गार्जियन सोचे कि हमारा बच्चा जो है ना स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, या इनको पढ़ाई में फ्यूचर अपना लगाना चाहिए बनाना चाहिए, लेकिन ये कभी जो है ना पढ़ाई छोड़ करके जो है गलत संगति में चले जाते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि लोग नशा के चक्कर में जो है ना गलत संगति में एक अर्ज जो होता है कि नशा के बिना नहीं रह सकता, तो कभी लोग चोरी करते हुए भी सुने गए हैं इस तरह से। तो ये तो एक पर्सनल लेवल पर, अगर पारिवारिक लेवल की बात की जाए तो उस परिवार के लिए एक बच्चा को जो है माता पिता जिस रूप में देखना चाहते हैं तो गलत रास्ते पर चला गया, तो पढ़ाई तो उनका नहीं बना, तो एक परिवार का जो उम्मीद होता है वो तो चला ही गया। ऊपर से जो एक युवा जो है भविष्य निर्माण के लिए समाज के लिए देश के लिए काम आना चाहिए, वो नशा के चलते जो है वो अपना समाज को देश को योगदान नहीं दे पाएगा। और एक तरह से आप बोल सकते हैं चूँकि ये परिवार के साथ साथ जो है जो परिवार उनको जो है पढ़ाई लिखाई करवा रहा है, तो एक आर्थिक नुकसान तो कर ही रहा है, और ये आर्थिक तो हमारे घर के लिए समाज के लिए देश के लिए सभी के लिए होगा, तो इस तरह से नुकसान तो हर लेवल पर है। और जैसे हमने पहले भी बताया कि नशा के चक्कर में जो है ना या पीयर प्रेशर के चक्कर में लोग एक आज के डेट में KTM वगैरह का बात आप नाम सुने हैं, तो ये सारी गाड़ियां लोग लेकर के जो है और नशा के चक्कर में जो है ना कंपटीशन करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इकलौता लड़का है लेकिन पीयर प्रेशर में जो है ना उस गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के गुजर जाते हैं। तो ये युवा को भी समझना होगा, एक जिम्मेदारी के साथ जो है अपना जो जीवन है समाज के प्रति उनको जागरूक होना पड़ेगा, तो मेरे समझ से ये उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी हम अपने डिपार्टमेंटल हम लोग जो बात करते हैं, ये कन्वर्जेंस वगैरह जो है ये हर लेवल पर होना चाहिए, प्रशासनिक को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कुछ कुछ तो देखा गया है कि चाबासा का अगल बगल कुछ कुछ बोर्ड लगाया गया है कि भाई आप इस तरह से जो है सार्वजनिक जगह पर आप नशापान नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको देखा जाएगा तो जुर्माना लगाया जाएगा, तो इस तरह का जो हम लोग देख पा रहे हैं। तो सरकार या हमारे प्रशासन की तरफ से पहल तो हो रहा है, लेकिन इस पर गार्जियन को मेन भूमिका निभाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको लगता है सभी को सबसे पहले गार्जियन को निभाना है अपना जिम्मेदार, उसके बाद समाज के बुद्धिजीवियों को, सब जितने भी हमारे जो शुभचिंतक है सभी को मिलकर इस पर चिंता करना पड़ेगा, और जो हमारे युवा भटक रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हमको एक दिशा निर्देश या प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा।
1: एक बात और जानना चाहेंगे कि आप एक डॉक्टर होने के नाते, क्या कभी ऐसे मरीज या हम यूँ कहें कि केस आपके पास आया है जो बहुत अत्यधिक नशा सेवन करता हो?
0: जी, बिल्कुल। अभी मेरे प्रैक्टिस करते हुए तो करीब 15-20 साल हो गए, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जैसे लोग नशा करते हैं शुरू में तो लोग को लगता है कि ये एक इंजॉय के लिए होता है, लेकिन कभी पीते पीते लोग इसका जो ना लत हो जाता है, मतलब एडिक्शन में चले जाते हैं। तो मैंने एक ऐसे भी पेशेंट को देखा है जिनको जो ना डॉक्टर ने बताया कि भाई आप अगर समय से नहीं छोड़ो

0: है इसको, तो आपको कैंसर हो सकता है। ये ऑटोमेटिक हम लोग बोलते हैं, ये सिरोसिस तो होता ही होता है, उसके बाद कैंसर जैसा सिचुएशन बन सकता है। तो ऐसे एक लोग से मेरा परिचय हुआ है जिनको जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, मतलब वो अपना लत छोड़ नहीं पाता, जिसके चलते जो ना उनका कहना था कि भाई हम इसको तो छोड़ नहीं पाता, कम से कम मेरे परिवार के लोग सही रहे, तो इससे हम अपने आप को इस दुनिया से अलग ही कर लेते हैं। तो इस तरह का हमने पहले भी जैसे आपको इंटरव्यू में बताया था कि सुसाइडल टेंडेंसी होता है, तो एक मेरे अभी तक की ज़िंदगी में हमने सुसाइड करते हुए देखा है। दूसरा जो है सिरोसिस में जो है, हमने आपको बताया कि एल्बुमिन वगैरह का जो सिक्रेशन कम होने लगता है, तो उससे क्या है कि पेट में जो है ना एसाइटिस वगैरह सब जो होता है वो डेवलप होने लगता है, उसमें बार बार आपको पानी निकालना पड़ता है, लेकिन उसमें जस्ट एक कंप्रोमाइज करने भर की बात होती है। तो इससे उस पेशेंट को तो दिक्कत होता ही है उसका, और आने अपने जैसे मरीज का जो लोड हमारे पास जो बढ़ता है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते, लीवर उनका ख़राब हो चुका है। तो विशेषकर हमने वही दो चीज़ देखा, और ऊपर से जैसे कुपोषित जो हो जाते हैं तो उनको ट्यूबरकुलोसिस होने का भी डर रहता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत करेंगे, तो ये अल्कोहलिज्म एक कारण बनता है, जैसे कि टीबी का जो है दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या जैसे अभी टीबी के मरीज का अगर हम लोग दवाई खिलाते हैं तो वो चूँकि उनका लीवर कमज़ोर रहता है तो वो दवाई नहीं खा पाते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे मरीज मिलते हैं, टीबी वाले मरीज मिलते हैं, सिरोसिस के मरीज मिलते हैं, तो पेशेंट का तो भरमार है हमारे पास।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इस भेंटवार्ता के साथ ही श्रोताओं, आज का विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से हमें विदा दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

रसरंजन कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म तेजाब से। आवाजें हैं अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: रसरंजन कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में चालबाज फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं बाहर आने तक फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं पंकज उदास और अनुराधा पोडवाल की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 10 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
2: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत।
3: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
2: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
3: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
2: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
3: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
2: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
3: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
4: Stephen, happy birthday to you!
5: Happy birthday to you, Stephen!
6: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you,
7: congratulations!
6: Thomas. Thank you, John! Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
4: Oh, fine.
6: Thanks for coming in. Please come in.
5: Oh, yes, sure. Yes, why not? Why not?
4: Come. Yay.
5: Come.
4: John, please come here.
5: Oh, sure.
6: Join us for a drink, please.
2: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
5: हाँ।

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे

0: दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
1: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
2: सब कुछ ठीक तो है ना?
1: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
2: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
1: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
2: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
1: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
2: नहीं, नहीं।
1: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
2: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
7: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
8: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
9: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
11: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
12: हाँ।
11: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
13: आग का गोला?
11: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ।
13: हाँ? कैसी पहेली है?
11: सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
12: सूरज।
11: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
13: रोज बहुत आसान पूछते हो।
11: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
13: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
11: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
12: हाँ।
11: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
13: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
11: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
14: वो तारा होता है।
11: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
15: वो रात और दिन भी बनाता है।
11: एकदम सही एकदम सही।
14: वो हमें धूप भी देता है।
11: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
13: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
11: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
13: विटामिन डी।
11: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
14: और
11: अच्छे।
14: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
11: हाँ बिल्कुल,
13: पेड़ों को खाना भी देता है।
11: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
13: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
11: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
13: हाँ।
15: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
11: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
13: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
11: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
13: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
14: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
11: ना।
14: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
11: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
13: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
11: बहुत बड़ा होता है
14: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
11: हम क्योंकि कहीं
13: दूर होता है इसलिए,
11: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
13: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
11: हाँ
14: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
11: अरे वाह भाई ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
12: सर्दी।
11: ओह ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
13: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
11: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला लेकिन,
12: सूरज आग का गोला लेकिन
11: फिर भी जीवन दाता है,
12: फिर भी जीवन दाता है।
11: धरती काटे चक्कर इसके,
12: धरती काटे चक्कर इसके,
11: लगे ये चलता जाता है,
12: लगे ये चलता जाता है।
11: सर्दी गर्मी बनते इससे,
12: सर्दी गर्मी बनते इससे,
11: ये दिन रात बनाता है,
12: ये दिन रात बनाता है।
11: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
12: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
11: सूरज ये
12: कहलाता है।
11: शाबाश सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
13: मौसी एक और पहेली आज ही बता दो।
11: आज नहीं अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
14: नहीं, जल्दी आना मौसी।
11: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा,
13: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
11: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊं कि नहीं आऊं।
13: वो भी दस पूछेंगे
11: दस सब दस पहेलियाँ। अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
13: डर जाती और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
11: 70 हो जाएंगे वो 10 से एकदम 70
14: नहीं 80 हो जाएंगे
11: फिर 100 हो जाएंगे फिर 200 ओके इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
16: उमंग उमंग उमंग उमंग।
17: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चयपासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। दिन के 10:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
18: ये रांची केंद्र है। 10:30 हुए हैं और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची का। दोस्तों मुस्कान वह रोशनी है जो खुद भी चमकती है और दूसरों को भी रोशन करती है। तो इन बातों के साथ जोहार रांची कार्यक्रम में अस्मिता है आपके साथ और मेरे साथ है
19: अर्चना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार,
18: नमस्कार जोहार
19: अस्मिता। ये जो सूरज की पहली किरण के साथ जैसे बिखर जाए कोई राग, हर सुबह लाती है अपने संग नई उम्मीदों का कोई भाग। चाय की पहली चुस्की हो या ऑफिस की पहली तैयारी, जोहार रांची बनेगी आपकी साथी हर सुबह की प्यारी सवारी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।
18: बिल्कुल।

0: श्रोताओं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस सुविचार के साथ।
1: दोस्तों, जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, कभी रास्ते कठिन लगते हैं, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है। ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा, हर नया दिन हमें एक नया अवसर देता है कुछ सीखने का, कुछ बेहतर करने का और अपने सपनों के से एक कदम और करीब जाने का। इसलिए बीते हुए कल की चिंताओं को छोड़कर आज को पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए। याद रखिए, छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है।

0: अर्चना जी, तो अब अपने श्रोताओं को मौसम की जानकारी थोड़ी दे देते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना? तो राजधानी समेत राज्य के कुछ जिलों में गुरुवार को भी जोरदार बारिश हुई। रांची के कोकर, रेलवे स्टेशन, डोरंडा, चुटिया आदि आसपास के क्षेत्रों में बारिश से मौसम काफी सुहाना हो गया था।
1: बिल्कुल
0: रांची समेत राज्य में अगले 2 दिन के दौरान कहीं कहीं तेज हवा और गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के दिन की अगर बात करें तो सुबह के समय में हल्के बादल और धूप के साथ साथ मौसम उमस भरा रहेगा और दोपहर में तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है और इसके साथ साथ गर्मी और उमस ज़्यादा महसूस होगी। शाम में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना अधिक है और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चलेगी, लगभग 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। और रात में मध्यम बारिश के साथ साथ तापमान में भी गिरावट आएगी, जिससे मौसम अपेक्षाकृत बहुत ही
0: बहुत ही
1: सुहावना
0: सुहाना हो जाएगा।
1: रहेगा।
0: हाँ
1: और अस्मिता बताएं, आज अगर बाहर निकलने का प्रोग्राम बना रही हैं आप और अगर हमारे श्रोताओं को भी अगर बाहर निकलना हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत
0: बहुत ही
1: जरूरी है।
0: जरूरी हो जाता है। बिल्कुल
1: जैसे बाहर निकलना जब हो तो छाता या रेनकोट साथ में जरूर रखें और जब गरज चमक के साथ बारिश हो रही हो या बिजली चमक रही हो तो खुले मैदानों में या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें, खासकर बिजली के खंभे के पास बिल्कुल भी खड़े ना हो। और चूंकि उमस भरा मौसम रह रहा है आजकल और आज भी दोपहर में काफी उमस रहने की संभावना है तो पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीती रहें। और साथ ही अगर अपने श्रोताओं को एक खूबसूरत सा गीतों का ठंडक फुहार दे दिया जाए तो और भी अच्छा
0: हाँ
1: लगेगा।
0: बिल्कुल।

0: अर्चना जी, आप तो जान ही रही हैं और हमारे श्रोता भी जान रहे हैं कि आज मुहर्रम है।
1: बिल्कुल हाँ।
0: तो चलिए थोड़ी सी बातें मुहर्रम के बारे में भी कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। यह केवल नए साल की ही शुरुआत नहीं होती, बल्कि त्याग, सत्य, धैर्य और इंसानियत के मूल्यों को भी याद करने का भी अवसर होता है। खास तौर पर मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी आशूरा का दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। उन्होंने करबला की धरती पर सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुहर्रम हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। आइए हम इस अवसर पर प्रेम, भाईचारे, शांति और मानवता के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आज कहीं बाहर निकलने का प्रोग्राम बना रही हैं आप और हमारे श्रोतागण भी अगर कहीं आज बाहर जाना चाह रहे हैं, रांची में कहीं बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो यातायात व्यवस्था को देखते हुए ही बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आज राजधानी रांची में मुहर्रम के जुलूस को लेकर 26 और 27 जून को शहर की यातायात व्यवस्था में काफी फेरबदल किया गया है। और इस आयोजन के मद्देनजर शुक्रवार और शनिवार को मेन रोड में वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 26 जून को सिया समुदाय की ओर से मातमी जुलूस निकाला जाएगा, यानी आज के दिन सिया समुदाय की ओर से जुलूस निकाला जा रहा है। और इसको देखते हुए दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक अलवा टेक्का चौक से रतन टॉकीज तक सामान्य वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। और इसके अलावा 27 जून को दोपहर 12 बजे से जुलूस की समाप्ति तक विभिन्न मार्गों में वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। तो आज अगर कहीं बाहर निकलने का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो या तो आज रुक जाए घर पर ही, 2 दिन घर पर ही रहे, और नहीं तो फिर यातायात की व्यवस्था को देखते
0: हुए निकले
1: बाहर निकले।

0: श्रोताओं, आज 26 जून और है और आज के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को, विशेषकर युवाओं को, यह समझाना है कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नशा व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, शिक्षा, रोजगार और पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कारण न केवल व्यक्ति का भविष्य प्रभावित होता है, बल्कि उसका परिवार और समाज भी परेशानियों का सामना करता है।
0: बिल्कुल, नशा धीरे धीरे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है और उसे अपने लक्ष्य से भटका देता है। इसके विपरीत यदि हम अपने जीवन में अच्छे विचार, अनुशासन, खेल कूद, शिक्षा और सकारात्मक सोच के साथ को अपनाएंगे तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस हमें यह संदेश देता है कि जीवन अनमोल है, हमें अपनी सेहत, अपने परिवार और अपने भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। आइए आज के इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि नशे से दूर रहेंगे, दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे और एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

0: अर्चना जी, अब इतिहास के पन्ने को पलटते हैं और जानते
1: बिल्कुल
0: हैं कि आज का इतिहास क्या है।
1: आज के दिन क्या क्या
0: हाँ हाँ
1: खास हुआ
0: खास
1: अपने
0: हुआ था।
1: श्रोताओं को आज हम लोग
0: हाँ हाँ
1: बताते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो 1458 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया। आधुनिक टूथब्रश के पहले मॉडल को चीन के राजा ने पेटेंट कराया था। 1714 ईस्वी में स्पेन और नीदरलैंड ने व्यापार एवं शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
0: और 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1992 में भारत ने 3 बीघा गलियारा 1999 वर्षों के लिए बांग्लादेश को पट्टे पर दिया।
1: सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। सन 1949 में बेल्जियम के संसदीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। और सन 1976 में कनाडा के टोरंटो में स्थित सीएन टावर को जनता के लिए खोला गया। 1815 फुट की यह इमारत उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसे 2007 में दुबई की बुर्ज खलीफा ने दूसरे स्थान पर धकेल दिया।
0: और बात करें 2000 की, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट मैच का दर्जा दिया गया। और 2004 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली का इस्तीफा, सुजात हुसैन नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने।
1: और सन 1982 में एयर इंडिया का पहला बोइंग विमान गौरी शंकर बम्बई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। और 1997 में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। और मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन 2004 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ।

0: अस्मिता, हमारी बातें चल रही है इतिहास की, तो आज हम लोग अब बातें करते हैं आज के दिन किस किस महान व्यक्तियों का जन्म हुआ।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो सन 1992 में मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं, उनका जन्म हुआ। और सन 1969 में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ है।
1: और जैन धर्म के भारतीय दिगंबर पंथ के प्रसिद्ध मुनि तरुण सागर जैन का जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 1967 में हुआ था। और भारतीय शोधकर्ता और रासायनिक वैज्ञानिक गोवर्धन मेहता का जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 1943 में हुआ था।
0: और सन 1942 में योगेंद्र नारायण, जो कि केंद्र सरकार में रक्षा सचिव और राज्यसभा में महासचिव पद पर रहे थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। और बंकिमचंद्र चटर्जी, जो कि बंगाली उपन्यासकार थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1838 ईस्वी में हुआ था।
1: और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ एस मल्लिकार्जुनैया का जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 1931 में हुआ था।
0: और 1888 में बाल गंधर्व मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, जो कि परम वीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक रहे हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1918 में हुआ था।
1: दोस्तों, अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अभिनय के बल पर फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई।

0: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय अभिनेता अर्जुन कपूर की।
1: अर्जुन कपूर का जन्म आज ही के दिन यानी 26 जून 1985 को मुंबई में हुआ था। वे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर के पुत्र हैं। बचपन से ही उनका वातावरण फिल्मों से जुड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पहचान केवल अपने परिवार के नाम से बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने दम पर संघर्ष किया और अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई।
0: और साल 2012 में फिल्म इश्क ज्यादे के माध्यम से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

0: इन दिनों अगर कुछ चर्चा में है तो क्या है पता है? कुछ हमारी इतिहास की तो बातें हो गई
1: हाँ
0: है, तो हम
1: हाँ
0: लोग क्यों ना खेल की ओर बढ़े।
1: हाँ बिल्कुल
0: और सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है फुटबॉल और क्रिकेट की,
1: हाँ
0: है ना? लेकिन क्रिकेट से भी ज्यादा इस वक्त फुटबॉल की चर्चा हो रही है। गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक, चाय की दुकानों से लेकर दफ्तरों तक, हर तरफ बस एक ही सवाल, आज किसका मैच है, कौन जीतेगा, किस खिलाड़ी का जादू चलेगा। फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक जुनून है। जैसे ही खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, हर पास, हर टैकल और हर गोल के साथ दर्शकों की धड़कनें भी तेज हो जाती है, और जब आखिरी मिनट में कोई शानदार गोल हो जाए तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता।
1: और बात करें ब्राजील ने विनीसियस जूनियर की बदौलत नॉकआउट में जगह बनाई, मगर चर्चा का केंद्र 3 साल बाद विश्व कप के लौटे नेवार भी रहे। 1981 में उन्नीस सौ
0: नहीं,
1: इक्यासी में
0: 981 दिन बाद।
1: नौ सौ
0: हाँ
1: इक्यासी दिन बाद
0: बिल्कुल,
1: ब्राजील की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे नेबार भावुक हो गए और मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में रो पड़े। 2023 में गंभीर घुटने की चोट के बाद उनकी फिटनेस पर सवाल थे।
0: इसीलिए इतने दिनों के बाद जब वो उतरे हैं तो वो काफी भावुक हो गए थे। और फ्रांस के किलियन एम्बापे और नॉर्वे के इर्लिंग हार्लैंड के बीच पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को दो नई पीढ़ियों के सबसे बड़े सितारों की रोमांचक टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। बोस्टन में होने वाला यह मैच ग्रुप आई की शीर्ष टीम का फैसला भी करेगा। दोनों खिलाड़ी दो मुकाबलों में अब तक चार चार गोल दाग चुके हैं। एम्बापे और हार्लैंड के बीच गोल्डन बूट के लिए मेसी 5 गोल से खरा मुकाबला दे रहे हैं।
1: बिल्कुल। और बात करें भारतीय टीम ने मार्च में लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप में जीता था और उसके बाद टीम शुक्रवार को जब पहली बार फटाफट क्रिकेट में उतरी तो उसका रूप काफी बदला हुआ नजर आ रहा था।
0: बिल्कुल, और साई सुदर्शन के शतक से श्रीलंका ए की टीम बैकफुट पर आ गई है। ठीक है, साई सुदर्शन ने गोल की टर्निंग पिच पर गुरुवार को स्ट्रेट ड्राइव और ऑफ साइड में बेहतरीन कवर ड्राइव से खूब रन बटोरे। इस ओपनर ने प्रथम श्रेणी का 9वां शतक जड़ा, साथ ही 2 अर्धशतकीय साझेदारी भी की। इससे भारत ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के पहले मैच की शुरुआती दिन 4 विकेट पर 333 रन बना मेजबान को बैकफुट पर डाल दिया। बिल्कुल, और अगर हम टेनिस की बात करें तो टेनिस में रांची के जीत को बालक वर्ग का एकल खिताब मिला है। वहीं राधा की फिरकी के बाद शेफाली का भी धमाल क्रिकेट में चला। धीमी पिच पर राधा यादव 3 विकेट की फिरकी के बाद शेफाली ने बल्ले से धमाल मचा दिया। दोनों के बेहतरीन प्रदर्शन से भारत ने गुरुवार को महिला T20 विश्व कप में बांग्लादेश को 5 विकेट से पराजित कर दिया। इस बड़ी जीत से टीम ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को और भी मजबूत किया है।
1: बिल्कुल।

0: इसी के साथ कार्यक्रम जोहार रांची का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अपनी रेडियो सखी अर्चना
1: और अस्मिता को इजाजत। नमस्कार, जोहार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आप सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो हम सफर अस्मिता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बॉर्डर फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया।

फरमाइशी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रिफ्यूजी से। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को जिसमें फिल्म में, जिसे लिखा था नीलेश मिश्रा ने और धुन बनाई थी MM करीम ने, और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे, आप थे औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। और अगली फरमाइश आई है हमारे श्रोता की, आप है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक और मीका बीरक, और आपने सुनना चाहा है गदर टू का ये खूबसूरत सा गीत अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाजों में, धुन बनाई है कौशल गोहिल ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: सखियों से दो बातें जब हो जाती हैं, मन की सारी थकान दूर हो जाती है। प्यार, विश्वास और अपनापन मिले तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। इसलिए एक बार फिर से अपनी बातों का पिटारा लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले सखियों को खुशबू का प्यार भरा नमस्कार। और आज मेरे साथ आपकी एक और सखी है,
1: सुभाषिनी। तो बहनों, स्वागत करते हैं आपका अपने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में, और सखियों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और साथ ही सखियों इस पल का इंतजार भी करते हैं हम बहुत ही बेसब्री से। तो सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम और आपसे बातें करेंगे, और हम यही चाहते हैं कि इस समय हम कोई काम ना करें, सिर्फ बैठ जाए और आराम से अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुने। क्यों खुशबू?
0: बिल्कुल, वैसे सच कहा सुभाषिनी तुमने। हमारे दिल में जो भी बात होती है ना, कभी कभी ऐसा मन करता है कि हम आराम से बैठे और कोई भी काम हमारे पास ना हो, क्योंकि आज की तेज गति वाले जीवन में हम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने स्वास्थ्य और आराम की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि सफलता और प्रगति के लिए मेहनत जरूरी है, ये मानती हूँ, लेकिन लगातार काम करना और शरीर को आराम ना देना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि काम के साथ साथ आराम भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने सखियों। हमारा शरीर जो होता है ना, वो एक मशीन की तरह काम करता है। जिस प्रकार से मशीन को लगातार चलाने पर उसे कुछ समय के लिए बंद करके आराम देना जरूरी होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर और हमारा दिमाग भी होता है जिसे आराम की जरूरत होती है। लगातार काम करने से शरीर में थकान, तनाव और मानसिक दबाव बढ़ने लगता है, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है।
0: क्योंकि आराम करने से शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि लगातार काम नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, थोड़ा संभलना चाहिए, है ना। और उससे मस्तिष्क को भी एक नई ताजगी मिलती है, और उसके बाद जब हम काम करते हैं तो उसे अधिक उत्साह और एकाग्रता के साथ करते हैं। और आराम का मतलब ना सुभाषिनी केवल सोना नहीं होता है, बल्कि शरीर और मन को तरोताजा करना भी होता है, जिसके लिए हम पर्याप्त नींद ले सकते हैं, योग या व्यायाम कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कोई अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं और परिवार के साथ समय भी बिता सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे मनोरंजन के लिए हम कर सकते हैं जिसमें हमें पर्याप्त आराम मिले, और ये सभी काम है ना तनाव को कम करते हैं और मानसिक शांति या सुकून देते हैं।
1: बिल्कुल सही। तो सखियों, सभी के लिए आराम बहुत जरूरी है। जैसे विद्यार्थियों या जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ आराम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, तो लगातार पढ़ाई करने से दिमाग जो होता है वो थक जाता है और हमारा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। इसी तरह से जो नौकरी पेशा के लोग हैं और जो गृहिणियां हैं खासकर, उन्हें भी, उनके लिए भी आराम उतना ही जरूरी है बहनों।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ भरपूर नींद की भी जरूरत होती है शरीर को, क्योंकि शरीर तभी हमारा है ना दोबारा से एनर्जी लेता है और फिर से हमारा शरीर काम करने के लिए तैयार होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति को भरपूर नींद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जैसा कि हमने आपसे बातें भी की, और कई प्रकार की ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए काम के साथ साथ आराम भी करें और इन दोनों के बीच संतुलन भी बनाए रखें।
1: बिल्कुल सही कह रही हो खुशबू। और तुमने कहा था ना कि आराम करने के लिए हम किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी मनपसंद काम कर सकते हैं, और जो हमारी हॉबीज है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है और किसी को गाना सुनना पसंद है। तो मुझे लगता है कि आराम का एक तरीका गाना सुनना भी है। तो चलो बहनों के साथ मिलकर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बहनों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर हम आप सभी बहनों का स्वागत करते हैं और खुशबू बताएंगी कि अब आगे कार्यक्रम में क्या है।
4: सखियों, अब हम आपको सुनाने वाले हैं एक भेंट वार्ता और आज का विषय है कमर के दर्द को नजरअंदाज ना करें। और आज की हमारी मेहमान है सलोनी कुमारी और उनसे बातें कर रही है सुभाषिनी। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
5: बहनों, विज्ञान के नए नए विभिन्न आविष्कारों ने हमारे जीवन को बिल्कुल आसान बना दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन शैली और आगे बढ़ने की होड़ में मनुष्य खुद को भूलता जा रहा है, यानी वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका परिणाम है एंजाइटी, डिप्रेशन, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरह की समस्याएं आम हो गई हैं। कमर दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरह की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए कोई दर्द निवारक दवा या तेल लगाकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस तरह की समस्याओं को नजरअंदाज करना क्या सही है? हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, तो आइए उनसे ही विस्तार से जानकारी लेते हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे कमर दर्द के विषय पर। हमारी बातचीत का विषय है कमर दर्द को न करे नजरअंदाज। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सलोनी कुमारी। आप एक प्राइवेट अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। सलोनी जी, हम आपका स्वागत करते हैं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। नमस्कार
6: जी। आपको भी मेरा नमस्कार
5: जी। सलोनी जी, कमर दर्द के बारे में पहले तो हम आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे और साथ ही ये भी बताएं कि आखिर ये होता क्यों है।
6: इस तरह से समझा जा सकता है कि हमारी पेट का जो ढांचा है वो रीढ़ की हड्डी ही है, और हड्डियों के बीच में यूं समझिए कि सॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है, जो गड्डी लगी हुई है, जिसे हम डिस्क कहते हैं। मांसपेशियां और जो नर्व्स होते हैं उससे मिलकर ये बनता है, और ये जो इतना जटिल ढांचा है वो अगर इस पे किसी भी तरह का किसी भी हिस्से पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो डैमेज होता है, तो वहां से फिर आपका दर्द शुरू हो जाता है
5: जी।
6: तो ये दर्द जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो एक्यूट पेन, यानी कि अचानक शुरू होता है और कुछ दिन में या 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने बहुत अधिक वजन उठा लिया तो दर्द उठ गया इस तरह से। फिर आता है क्रोनिक पेन, और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और 3 महीने से ज्यादा समय तक लगातार बना रहता है, और इसके लिए आपको डॉक्टर की इलाज की जरूरत होती है। कमर दर्द होने के कारण जो उसका मुख्य मेन जो है रीजन, वो है हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल खराब हो गई है। गलत पोस्चर है, ऑफिस में या कंप्यूटर पे हम बैठते हैं तो बैठने का तरीका हमें पता नहीं, आगे झुककर बैठते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, गर्दन पीठ झुकाकर देखते रहते हैं बहुत देर तक, या हो गया कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिससे कि पीठ की जो मसल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं मिलता है। ओबेसिटी भी एक कारण होता है कि ज्यादा मोटापा होने से वजन ज्यादा हो जाता है आपका, तो रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और टेंशन भी है, मानसिक दबाव है, तनाव है, तो इसके चलते भी जाने अनजाने मांसपेशियां है वो टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, जिससे पीठ में दर्द रहने लगता है। और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां भी हो गई इसका कारण, जैसे कि स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, गठिया हड्डियों की कमजोरी और शारीरिक गतिविधि आपकी नहीं है।
5: जी जी।
6: बहुत से लोग आजकल जिम जाते हैं और गलत तरीके से डेडलिफ्ट करते हैं, घर में भी भारी सामान को बिना घुटने मोड़े अचानक से उठा लेते हैं, और अत्यधिक टेंशन और एंजाइटी के कारण भी होता है, मैंने बताया, जिससे क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो लगातार टेंस रहते हैं, खिंचे खिंचे रहते हैं, जो दर्द का कारण होते हैं। और या तो आप बहुत अधिक मुलायम गद्दे पर सो रहे हैं या तो बहुत अधिक सख्त गद्दे पर सो रहे हैं, तो इससे भी हड्डी को सही सपोर्ट नहीं मिल पाता है और कमर दर्द होता है आपको। और खान पान में हम पौष्टिक चीजें नहीं ले पाते हैं, कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गया, जिसकी भारी कमी से हड्डियों की मजबूती में फर्क पड़ता है, कमजोर हो जाती है हड्डियां। और महिलाओं की अगर बात करें तो उसमें होने वाले कुछ बदलाव भी कमर दर्द का कॉज बनते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट वुमन है तो जो उनके शिशु का वजन, गर्भ में शिशु है तो वजन और हार्मोनल बदलाव होते रहता है, जिसके कारण जोड़ों के ढीले होने से कमर पर तनाव पड़ता है। फिर पीरियड्स के दौरान भी, पीरियड्स में जो हार्मोनल जो अप डाउन होता चढ़ाव होता है, गर्भाशय के संकुचन से भी कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। और आपको पता है 34% से 83% महिला जो होती है पेरी मेनोपॉज, यानी कि जो मेनोपॉज होता है उसके पहले का समय और मेनोपॉज के समय पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता है, उनको दर्द की शिकायत करती हैं। और एस्ट्रोजन महिला का जो बॉडी है उसका एक मेन हार्मोन होता है, जो उसकी जो मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, उसके उसे हेल्दी रखता है। मेनोपॉज में जो ये हार्मोन होता है, ये तेजी से इसका जो है लेवल है वो गिरने लगता है और इसका इफेक्ट पड़ता है रीढ़ की हड्डी पर। और जो उसके डिस्क होते हैं, कुशन होते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं उसको, और इसकी कमी से सूखने लगता है डिस्क। एस्ट्रोजन की कमी से जो डेंसिटी होती है बोन्स की वो भी कम होती होने लगती है। इससे हड्डियां इतनी कमजोर और नाजुक हो जाती हैं कि कंप्रेशन फ्रैक्चर होने लगता है, रात में पसीने आते हैं, ये सब कारण होते हैं। नींद की कमी हो जाती है, नींद नहीं पूरी होने से भी शरीर में कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल मतलब वो तनाव का जो हार्मोन होता है ना, वो बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशी में दर्द होता है।
5: जी जी।
6: तो इस तरीके से कमर दर्द होते हैं।
5: तो आजकल हर दूसरे घर में कोई ना कोई इस कमर दर्द से परेशान है, लोग इसे आम थकान समझकर छोड़ देते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है?
6: कमर दर्द को सामान्य समझकर छोड़ना ही सबसे बड़ी गलती है। ये जान लेना होगा कि कोई भी दर्द अगर शरीर में होता है, आपके बॉडी में होता है, तो ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो कि बताता है कि आपके अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, गड़बड़ है। और इसे नजरअंदाज करने से मामूली खिंचाव भी बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है।
5: जी, तो कैसे समझे कि कमर दर्द सामान्य है या कोई गंभीर खतरे का संकेत है?
6: अगर दर्द आराम करने या सामान्य कोई बाम वाम लगा लिया तो उससे 2-3 दिन में ठीक हो गया तो वो ठीक है, सामान्य है। लेकिन अगर गंभीर संकेत को पहचानना है तो आपको ध्यान देना होगा कि दर्द लगातार 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बना रह रहा है, दर्द कमर से होते हुए पैरों के नीचे तक जा रहा है, तो ये समझना होगा कि साइटिका का के लक्षण हो सकते हैं। फिर आपको कमजोरी लग रही है, पैरों में झुनझुनी है, सूनापन है, रात में सोते समय दर्द बहुत अधिक बढ़ जा रहा है, दर्द इतना है कि बुखार आ जा रहा है, कंट्रोल करने में दिक्कत हो रहा है,

0: तो ये सब जो लक्षण है तो इस तरह तो आप तुरंत समझ जाए कि डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर को दिखाना है।
1: जी, तो अगर कोई व्यक्ति इन लक्षणों को लंबे समय तक अगर नजरअंदाज करता है तो उसे क्या परेशानी आ सकती है?
0: लापरवाही अगर आप बरत रहे हैं तो लापरवाही बरतने से रीढ़ की हड्डी जो है आपकी वो स्थायी रूप से डैमेज हो सकती है।
1: जी जी।
0: और स्लिप डिस्क की समस्या बढ़ जाती है जिससे नसें दब जाती है। और गंभीर मामलों में पैरों का पैरालिसिस यानी कि लकवा हो सकता है या आपको सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। कमर दर्द अगर आपको लंबे समय तक है और आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो सिर्फ पेन किलर खाकर दबाने से शरीर को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जब कमर दर्द को नजरअंदाज किया जाता है तो रीढ़ की हड्डी के बीच की जो डिस्क है, जो गड्डी है
1: जी,
0: वो अपनी जगह से खिसक जाती है। इससे वहां से गुजरने वाली जो मेन आपकी वेन होती है, नसें जो होती है वो बुरी तरह से दब जाती है, दबने लगती है। यदि नस लंबे समय तक ऐसे ही दबती रहे तो वो हमेशा के लिए फिर डैमेज हो जाती है, हो सकते हैं
1: जी।
0: और शुरुआत या मामूली में कमर दर्द के बाद में क्या होता है कि वो साइटिका का रूप ले लेता है, उधर चली जाती है। तो इससे दर्द कमर से शुरू होकर कूल्हे के रास्ते से पैरों की उंगलियों तक फैल जाता है
1: जी।
0: इसके कारण उठने बैठने और चलने में बहुत तेज, आप देखेंगे कि बिजली के झटके जैसा पेन होता है। और नसों में लगातार जो अगर प्रेशर पड़ रहा है तो पैरों में खून का दौरा और सिग्नल्स कम हो जाते हैं, इससे भी पैरों में लगातार झुनझुनी रहती है या पैर के तलवों में सूनापन हो जाता है, पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिससे चलते समय पैर अचानक मुड़ जाता है या चप्पल आपके पैर से निकल जाता है। कमर दर्द से बचने के लिए आप टेढ़ा मेढ़ा होकर सोते हैं, झुक कर बैठते हैं या और टेढ़ा होकर चलना शुरू करते हैं। तो लंबे समय तक ऐसा करते रहने से फिर पूरा शरीर का आपका जो पोस्चर होता है वो परमानेंटली बिगड़ जाता है, जिससे गर्दन, कंधों और घुटने में भी दर्द होने लगता है
1: जी।
0: और अगर आप यूरिन या मोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल हो गया है, तो ये समझ लें कि ये एक इमरजेंसी है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की नसें पूरी तरह से दब जाती हैं तो व्यक्ति अपने यूरिन और स्टूल पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, कंट्रोल ही नहीं रख पाएगा। यदि इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो पैरों में हमेशा के लिए पैरालिसिस हो सकता है। और जो समस्या शुरुआत दौर में केवल सही आपके जो पोस्चर या फिजियोथेरेपी या कुछ आसान एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है, तो उसे नजर अंदाज करने पर लास्ट में सिर्फ बस वही ऑप्शन होता है, स्पाइन सर्जरी एकमात्र।
1: जी सलोनी जी, अब हम बात करते हैं कमर दर्द के निवारण के बारे में। तो अगर किसी को कमर दर्द है तो उसे ठीक करने के क्या उपाय हैं?
0: दर्द का निवारण इस बेसिस पर किया जाता है कि यदि दर्द मामूली खिंचाव के कारण है तो कुछ दिनों तक अगर सही देखभाल से ठीक हो जाता है, लेकिन दर्द पुराना है तो इसके लिए एक व्यवस्थित इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि आप सही बैठने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। कुर्सी पर आप जब भी बैठे तो हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठे, कंप्यूटर स्क्रीन को आंखों के स्तर, मतलब आपका जो आई लेवल है उसके लेवल तक रखे ताकि गर्दन और आपका जो पीठ है वो झुके नहीं। और यदि आपका डेस्क जॉब है तो हर 40-45 मिनट में अपनी सीट से उठकर 2-3 मिनट के लिए टहले। पेट आपका बढ़ा हुआ है, मोटापा है, तो रीढ़ की हड्डी पर अलग से प्रेशर पड़ता है, उसने अपना वेट नियंत्रण में रखे। भारी सामान जब उठाते हैं तो सीधे कमर के बल पर नहीं झुके, पहले आपको घुटने को मोड़े, इससे घुटने मोड़ कर नीचे बैठे, फिर सामान को शरीर के पास रखते हुए सीधे खड़े हुए
1: जी।
0: और मांसपेशी को तो मजबूत करना ही है, पीठ की मांसपेशी को मजबूत करें, इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आजकल सब योग का सहारा ले रहे हैं, मैं भी सलाह देती हूँ, जैसे कि भुजंगासन हो गया, मरकटासन हो गया, कैट काउ स्ट्रेच हो गया, जो इसमें कमर दर्द में बहुत फायदा होता है। फिर अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो

0: भी अच्छा है, वो वहां पर सारे ट्रीटमेंट देते हैं यदि दर्द पुराना है तो डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर सीख सकते हैं। और नियमित वॉक करें, 20-30 मिनट तो आपको वॉक करना ही चाहिए, जिससे रीढ़ की हड्डी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है।
1: जी जी।
0: और घर में आप इस तरह से कर सकते हैं कि या चोट या खिंचाव ताजा है तो अगर सूजन है तो बर्फ से सिकाई करें
1: जी।
0: और दर्द पुराना है, मांसपेशी में अकड़न है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है तो उसके लिए गर्म पानी की थैली या हीटिंग पैड से सिकाई करें।
1: अच्छा।
0: और सोने के लिए ना तो बहुत अधिक मुलायम गद्दे में, ना ही एकदम फर्श जैसा सख्त हार्ड गद्दा भी ना ले। ऑर्थोपेडिक या मीडियम फर्म का गद्दा ठीक रहेगा और रीढ़ के प्राकृतिक घुमाव को वो मेंटेन करके रखता है। कैल्शियम और विटामिन थ्री की कमी ना होने दे हड्डियों की मजबूती के लिए, दूध पनीर दही हरी पत्तेदार सब्जियां अंडे खाएं। डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी थ्री और कैल्शियम के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स हो गया, जैसे कि अपने डाइट में हल्दी अदरक ओमेगा थ्री फैटी एसिड जैसे अखरोट अलसी के बीज इनको शामिल करें, जो शरीर के जो आपका अंदरूनी जो दर्द है सूजन है उसको कम करता है। और दर्द है या सूजन है तो उसको कम करने के लिए आप डॉक्टर की का एडवाइस जरूर लें। ये जो दवाएं हैं दर्द निवारक मलहम का उपयोग करें बिना डॉक्टर के सलाह के, खुद से ना कोई पेन किलर खाए। और सर्जरी की नौबत बहुत अधिक नहीं आती है, 5% से भी कम मामले में जहाँ डिस्क बहुत अधिक बाहर निकल जाती है या नसें बुरी तरह से दब जाती है, जैसे कि साइटिका में हो गया या पैरालिसिस का खतरा हो रहा है, तो डॉक्टर स्पाइन सर्जरी की सलाह देते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, यानी सलोनी जी के अनुसार अगर हम अपने जीवन शैली में सुधार करें, सही खान पान रखें और कुछ सावधानियां रखें जैसे सलोनी जी ने बताया उनका पालन करें, तो बहनों कमर दर्द से बचा जा सकता है। अगर आप अपने कमर दर्द से भी परेशान हैं तो उसे नज़रअंदाज ना करें और चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। जितनी जल्दी आप इस पर ध्यान देंगी उतनी जल्दी इसका निवारण भी अच्छी तरह से हो सकता है। सलोनी जी इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए और हमारे लिए समय निकाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता और आज का विषय था कमर दर्द के ना करे नजरअंदाज, और आज की मेहमान थी सलोनी कुमारी जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और उनसे बातें कर रही थी सुभाषिनी। सुभाषिनी बातें तो हमारे पास बहुत सारी है लेकिन घड़ी की सुई हमें इजाजत नहीं दे रही है, तो अब हमारे कार्यक्रम का वक्त है यही समाप्त हो गया है।
3: और बहनों से यही कहेंगे कि बहनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने घर में जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं और छोटे बच्चे हैं उनको उनका भी ध्यान रखें, अच्छे पौष्टिक खाना देने की कोशिश करें, जो मौसमी फल सब्जियां हैं वो सब दे और खुद भी खाए। और इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं बहनों से,
2: लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे जी की। तो सखियों अब अपनी दो सखी खुशबू
3: और सुभाषिनी को दीजिए विदा।
2: नमस्कार।
4: गृह लक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजीगर से ये खूबसूरत सा गीत विनोद राठौड़ और आशा भोसले की आवाजों में। धुन बनाई थी अनु मलिक ने। आइए अब अगला गीत सुनते हैं इश्क फिल्म से। संगीत जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने और आवाजें हैं उदित नारायण और विभा शर्मा की।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: डट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में, जिसे लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के।

फिल्म संगीत का अगला और आखिरी गीत फिल्म आकर्षण से प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और

ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जिले के सभी प्रशासनिक ब्लॉक में आज जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसके तहत व्यवहार न्यायालय से परिसर से पूरे सुभाष चौक होते हुए पूरे जामशाला में जागरूकता कार्यक्रम रैली निकाली गई। नशे के विरुद्ध प्रचार किया गया और लोगों से अपील की गई कि वो नशा ना करें, क्योंकि नशा करने से भविष्य खराब होता है।
1: रांची जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 से 30 जून तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग 5,05,524 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद तथा दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन 28 जून को जिले के 3,893 पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक देंगी। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में फायर सेफ्टी जांच अभियान के दौरान 17 संस्थानों के निरीक्षण में 14 संस्थान सुरक्षा मानकों पर फेल पाए गए। अपर नगर आयुक्त जितेंद्र यादव ने संचालकों को तत्काल फायर सेफ्टी उपकरण अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। निगम ने अभिभावकों से भी नियमों की अनदेखी की सूचना देने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किए और देश तथा समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। केंद्रीय मंत्री के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि उनका बलिदान आज भी करोड़ों लोगों को सत्य, न्याय और इंसानियत की राह पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास का प्रतीक है। मुहर्रम के अवसर पर कल निकलने वाले जुलूस को देखते हुए रांची शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्त होने तक अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक, शहीद चौक, अल्बर्टेका चौक, सरजना चौक, मेन रोड और राजेंद्र चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य और यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और आवश्यक होने पर ही इन क्षेत्रों की ओर जाने की अपील की है, ताकि मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। रांची नगर निगम चुनाव के 3 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महापौर, उपमहापौर और पार्षदों का मानदेय तय नहीं हो सका है। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने कहा है कि फंड और मानदेय नहीं मिलने से नगर निगम के नियमित कार्यों और विकास योजनाओं के संचालन पर असर पड़ रहा है।
3: मानदेय एक सम्मानजनक हो ऐसा हम लोग भी चाहते हैं और पहले भी मानदेय की सुविधाएं थी, इसलिए सरकार से आग्रह किया है। जब चुनाव हम लोग जीत करके आए तो एक पत्र के माध्यम से सरकार को हमने अवगत भी कराया है, तो जल्द से जल्द उन्हें सम्मानजनक एक मानदेय मिलना ही चाहिए ताकि सुविधाएं जनता

0: प्रतिनिधि हैं उनको मिल सके।
1: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर बारलोंग के पास हुए भीषण सड़क हादसे में बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार कोयले लदे ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान सवारी वाहन को टक्कर मार दी। हादसे के बाद सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-23 जाम कर सड़क सुरक्षा की मांग की। रांची के JSCA स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने JSCA प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि इस मामले में JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।
2: अगर उनका पास चेक नहीं होना है, फ्री एंट्री है, तो जैसे कोई आया उसको स्टेडियम के अंदर एंट्री करनी चाहिए, लेकिन उनको सुबह से शाम तक खड़ा रखा गया और भीड़ जब बेकाबू हो गई तो उस बेकाबू भीड़ में गेट खोला गया जिससे बैरिकेड टूटे, महिलाएं घायल हुई, बच्चे घायल हुए, कोई व्यवस्था महिलाओं के अलग से नहीं थी, बच्चों के लिए नहीं थी।
1: झारखंड T20 क्रिकेट लीग फाइनल के दौरान रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद SSP राकेश रंजन के नेतृत्व में SIT गठित कर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ी सबसे मजबूत लड़ाई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 28 जून से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से नई दरें होंगी लागू। मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। 27 जून को कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रहेगी रोक। और रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत, आक्रोशित लोगों ने NH-23 किया जाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की कलाकारा है गिरिजा देवी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद गजलें मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे मिताली सिंह को सुगम संगीत के कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium this morning. In its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान. कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा. उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया. भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया. T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से. टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें. और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया. अब समाचार विस्तार से. गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है. उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की. श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की.
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है. आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय. और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए.
1: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं. उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा.
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं. ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं. इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी.
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
5: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है।

0: हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार हैं।
0: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला एक एक गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म टसन से। आवाजें हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की। धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म तेरे नाम से ये खूबसूरत सा गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂಗೆ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती. कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आर्यन से. आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की. धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने.

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने। फिल्म का नाम है आई।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय को एक महान साहित्यकार बताया, जिनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर क्षेत्र के करंजों में आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन विस्तार पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजना का उल्लेख करते हुए उन्हें आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया।
2: प्रशिक्षण के माध्यम से हम कार्यकर्ता का भी निर्माण करने का काम करते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे बूथ स्तर से लेकर के मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। संगठन का आंतरिक विषय होता है, हम चर्चा करने का काम करते हैं।
1: सरायकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 1 से 15 जुलाई तक 15 दिवसीय योग, औषधि, दर्शन एवं नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। मारवाड़ी धर्मशाला में प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक आयोजित होने वाले इस निःशुल्क शिविर का संचालन योग शिक्षक एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य किशोर मिश्रा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में 28 से 30 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बताया कि अभियान के सफल और शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं।
3: 28 से 30 तारीख तक पल्स पोलियो की दवाइयाँ पिलाई गई। 28 तारीख को गिरिडीह जिले के टोटल जो बूथ है 2337 बूथ, उस पर बच्चों को जो 0 से 5 साल के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन, जो अभी BOP की बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की दो गुण दवाइयाँ दी जाए।
1: आज आशूरा ए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए

अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। सिमडेगा जिले की जलडेगा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी आशीष साह उर्फ आशीष साव को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ डीडी पासवान ने बताया कि 14 अप्रैल को बांसचोर ओपी क्षेत्र में एक कार से लगभग 28 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसमें तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहां के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
2: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरिपाई है, मन ही की प्रतीत।
3: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
2: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
3: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
2: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
3: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
2: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
3: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
4: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
5: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
6: हाउ आर यू?
7: Thank you,
6: congratulations.
7: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
4: Oh, fine.
7: Thanks for coming in. Please come in. Please.
5: Oh, sure. Yes. Why not?
4: Come. Hey.
5: Come.
4: John, please come here.
5: Oh, sure. Hey.
7: Join us for a drink, please.
2: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
3: जी।
2: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ। और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
7: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
6: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग ना होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
10: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
11: आग का गोला?
10: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
11: सूरज।
10: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
11: रोज बहुत आसान पूछते हो।
10: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
11: है। अगली बार मैं बहुत मुश्किल।
10: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली ही नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
11: हाँ।
10: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
11: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
10: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
12: वो तारा होता है।
10: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
12: वो रात और दिन भी बनाता है।
10: एकदम सही एकदम
13: सही। वो हमें धूप भी देता है।
10: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
11: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
10: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
11: विटामिन डी।
10: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
13: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
10: हाँ हाँ बिल्कुल।
11: पेड़ों को खाना भी देता है।
10: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
11: धीरे धीरे रात घूमते, जब भी सुबह रात होती जाती है।
10: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
11: हाँ।
12: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
10: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
11: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
10: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
11: वो तेज चलती है, लगता है वो भी तेज चल रही है।
13: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
10: ना।
13: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
10: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
11: वैसे वो बहुत बड़ा भी होता है।
10: बहुत बड़ा होता है
13: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
10: हम क्योंकि कहीं
11: दूर होता है इसलिए,
10: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
11: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
10: हाँ
13: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
10: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
14: सर्दी।
10: ओह ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
11: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
10: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
13: नहीं
10: है
13: करता।
10: सूरज आग का गोला, लेकिन
14: सूरज आग का गोला लेकिन
10: फिर भी जीवन दाता है।
14: फिर भी जीवन दाता है।
10: धरती काटे चक्कर इसके,
14: धरती काटे चक्कर इसके,
10: लगे ये चलता जाता है,
14: लगे ये चलता जाता है।
10: सर्दी गर्मी बनते इससे,
14: सर्दी गर्मी बनते इससे,
10: ये दिन रात बनाता है,
14: ये दिन रात बनाता है।
10: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
14: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
10: सूरज ये
14: कहलाता है।
10: शाबाश सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
11: मौसी कर पहेली आज ही बता दो।
10: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
13: जल्दी आना मौसी।
10: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा,
11: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
15: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
11: वो भी दस पूछेंगे,
15: दस पहेलियाँ। और चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
11: डर जाती है, कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
15: 70 हो जाएंगे, 10 से एकदम 70
13: नहीं 80 हो जाएंगे,
15: 100 हो जाएंगे, 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
16: उमंग उमंग उमंग उमंग।
17: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आई हेट लव स्टोरी के इस खूबसूरत से गीत के साथ। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की।

अगला गीत आइए सुनते हैं, रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल की आवाजों में धुन बनाई है साजिद वाजिद ने, फिल्म का नाम है वीर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज का अगला गीत हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से, शब्द रचना कुमार के हैं, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की।

अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के लिए इस गीत को संगीत दिया है निखिल विनय ने। फिल्म का नाम है मुस्कान।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देवघर सर्किट हाउस में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और राष्ट्रीय जनता दल के देवघर विधायक सुरेश पासवान के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक हुई। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और राज्यसभा चुनाव के बाद हुई इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। गिरिडीह जिले में 28 से 30 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बताया कि अभियान के सफल और शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और विधिवत पूजन किया। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत में उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

देते थे। अगर किसी को अपने बाप का कातिल भी सामने नजर आता तो वो इस महीने की हुरमत की वजह से इससे बदला नहीं लेता था। इस्लाम ने न सिर्फ इस रवायत को बरकरार रखा बल्कि इसे मजीद तकद्दस बख्शा। हिजरत मदीना के बाद जब सहाबा कराम के मशवरे से इस्लामी साल का इब्तदा का फैसला हुआ तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा के दौरे खिलाफत में मुहर्रमुल हराम को साल का पहला महीना मुकर्रर किया गया, क्योंकि इसी महीने में हज के बाद मुसलमान अपने घरों को लौटते हैं और नए सफर का आगाज होता है। आशूरा की तारीखी अजमत और अंबिया की तारीख। मुहर्रमुल हराम दसवीं तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। ये दिन सिर्फ वाकया करबला की वजह से ही अहम नहीं है बल्कि कायनात की तखलीक से लेकर अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख तक इस दिन बेशुमार अजीमुश्शान वाकयात रूनुमा हुए हैं। तखलीक कायनात और हजरत आदम रवायात के मुताबिक इसी दिन जमीन व आसमान को पैदा किया गया और इसी मुबारक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा बारगाह इलाही में कबूल हुई। किश्ती नूह को नजात। जब दुनिया अजीम तूफान आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती महीनों पानी पर तैरती रही। आशूरा के दिन ही वो कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी और इंसानियत को नई जिंदगी मिली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए और नमरूद की दहकती हुई आग से उन्हें इसी दिन सलामत निकाला गया। जब फिरौन ने

श्रोताओं, इसके पहले आपने सुना फिल्म सुहाग का गीत मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, और उसके बाद आपको हमने सुनवाया फिल्म का नाम था शोले। मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज़ें थीं, आनंद बख्शी के बोल जैसा कि मैंने पहले कहा, और आरडी बर्मन का संगीत था। अब आपको कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं फिल्म सिंदूर का ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के लिखे कुछ गीत। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का और सुरेश चंद्र सोय का जोहार
1: जोहार।
0: और आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं किसान भाई बहनों सुरेश जी, तो आपको भी जोहार रहा और हमारे किसान भाइयों को भी जोहार।
1: तो आपको भी कमलेंदु जोहार और हम अपने श्रोताओं को भी जोहार करते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
0: हाँ, तो सुरेश जी, अक्सर देखा जाता है कि हमारा जो किसान भाई हैं खेतीबाड़ी में कई प्रकार के अनाज सब्जी जैसे कंद और फलों की बागवानी भी करते हैं, और कभी कभार ये भी देखा जाता है कि जल्दबाजी में जैसे तैसे पौधों को या फिर बीजों को लगा देते हैं, और ऐसे में होता क्या है कि कुछ दिनों के पश्चात बीज उगते ही नहीं है या फिर पौधों का विकास सही तरीके से होता नहीं है, फिर पौधों में कुछ बीमारियाँ आ जाने से सही उपज नहीं प्राप्त होता है, तो किसान

0: भाई सोचते हों कि बीज सही नहीं था या फिर पौधा सही नहीं था, लेकिन ये सोचते नहीं है कि सही कारण क्या है। दरअसल होता क्या है सुरेश जी कि पौधों के जड़ में कुछ हानिकारक जो कीटाणु होते हैं या फंगस होते हैं, जिन्हें हमें कीटनाशक घोल में डुबोकर लगाना चाहिए, विशेष करके अनाज फसलों में या फिर बागवानी में और उद्यानों में। पौधों की जो रोपाई करते हैं उसके समय दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, इससे बचाने के लिए कुछ पाउडर मिलते हैं या फिर हम नीम या करंज का खली इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीजों को भी उपचारित करके ही रखना चाहिए ताकि आने वाले दिन में ख़राब ना हो, भंडारण सही तरीके से हो। और सूरज जी, ये सभी जो प्रक्रिया जहाँ तक हो सके स्वनिर्मित अगर करें, जो स्वनिर्मित हम लोग कीटनाशक बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खर्च भी ना हो और स्वस्थ भी या फिर पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल।
0: यदि किसान भाई अगर इसकी जानकारी नहीं है तो समय समय पर प्रखंड स्तर से हो या फिर जिले स्तर से या कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है, इन सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ या फिर जो संबंधित व्यक्ति हैं, ये प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को जानकारी देते रहते हैं। तो किसान भाइयों को इससे लाभ लेना चाहिए और प्रशिक्षण में भाग भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल। इसको और ज़्यादा हम यदि इसको साधारण शब्दों में कहें कमलेंदु जी, कि बच्चों को यदि हम दो बूंद पोलियो का डालते हैं, तो बच्चे जो आने वाले समय में बड़े होकर कि वो पोलियो जैसी बीमारियों से ग्रसित ना हो, इसके लिए हम पोलियो का दो बूंद हम देते हैं। तो किसानों को भी जो बीज है ये भविष्य में जो फफूंदी नाशक या फफूंदी से संबंधित जो जीवाणु है वो बीमारी ना हो, इसके लिए बीजो उपचार जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: कि जिस प्रकार बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो की दो बूंद चाहिए, उसी प्रकार से बीजों के उपचार के द्वारा हम अपने बीजों को उन फंगस रूपी रोगों से हम बचा सकते हैं। मतलब एक तरह से दो ग्राम बीजों उपचार से यदि हम करते हैं तो हमारे पौधे स्वस्थ होंगे, और जहां स्वस्थ होंगे वहां उत्पादन भी बढ़ेगा। और यदि उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसीलिए सारे श्रोताओं को हम आशा करेंगे कि आप बीजो उपचार जरूर करें। कंद वाले हों या जिसको आप रोपते हैं या बीजो है, सारे के सारे चीजों को आप बीजो उपचार करें। यदि इसके संबंध में जानकारी नहीं है तो प्रखंड स्तर पर जो कृषि पदाधिकारी हैं या कृषि वैज्ञानिक किसान मित्र हैं, उनसे सलाह करके बीजो उपचार जरूर करनी चाहिए।
0: और सूरज जी, आजकल जैसे कुछ दिनों के पश्चात धान की खेती हमारे किसान भाई जोरदार करेंगे, तो इनके जो जड़ों को आप कोई कीटनाशक घोल होता है उनमें डुबा करके अगर करते हैं तो आने वाले दिन में जितने भी धान में लगने वाले रोग हैं, बीमारियां हैं, उससे निजात पा सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। इसके साथ साथ क्योंकि हम रोपण विधि कर रहे हैं तो निश्चित दूरी चाहिए,
0: जैसे
1: कृषि विभाग की ओर से या आत्मा की ओर से 9 इंच की जो दूरियां, श्री विधि की जो कॉन्सेप्ट
0: श्री विधि
1: तो यूं हम वर्षों से कर रहे हैं, रोपण विधि कर रहे हैं, लेकिन दूरियों को यदि हम मेंटेन करते हैं तो ये पौधों को बढ़ने में सहूलियत होती है। ये ब्रांचेस यानी शाखाएं बहुत ज्यादा निकलती है, इसीलिए एक दूरियों को मेंटेन करना चाहिए। खरपतवार में भी हमें सुविधा होता है
0: और पौधे अगर अच्छी तरह से विकसित होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें पैदावार भी ज़्यादा होगा, उपज ज़्यादा मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इन सभी बातों को हमारे किसान भाई जरूर ध्यान देंगे और खेती बाड़ी को सही तरीके से अंजाम देंगे। तो बात को यहीं पर विराम देते हुए आगे हम थोड़ा मनोरंजन भी कराते हैं हमारे किसान भाई बहनों को, और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: एक प्रबुद्ध व्यक्ति आज हमारे बीच में है, कनरा बैंक के शाखा प्रबंधक हमारे ज्योतिकांत पिंगवा जी, और इनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना क्या है, इनसे हमारे किसान भाइयों को या फिर अन्य व्यक्तियों को कैसे इसका लाभ मिलेगा। इन सभी बातों को लेकर के आज इनके साथ बातचीत कर रहे हैं सुरेश चंद्र सोए जी।
1: कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोए का जोहार। श्रोताओं, केंद्र सरकार चाहती है कि देश आत्मनिर्भर बने, सबका साथ सबका विकास। इसी परिकल्पना को पूरा करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री ने बैंकों से संबंधित एक ऋण से संबंधित एक योजना लागू किया है, जिसको हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के संबंध में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हुए हमारे ब्रांच केनरा बैंक चाईवासा। तो हमारा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जोहार।
2: जोहार, मेरा नाम जेके पिंगवा है, मैं वर्तमान में केनरा बैंक के मराठा शाखा में ब्रांच मैनेजर हूँ, और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं मुद्रा योजना के बारे में।
1: तो ये मुद्रा बैंक योजना की आवश्यकता आपकी नज़र में क्यों जरूरत है?
2: मुद्रा योजना के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो हमारा भारतवर्ष जो हमेशा से रहा खेती पे ही निर्भर रहा। तो सन 2015 में जब गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे देश को नए सिरे से बनाना है, तो उसने उद्यमों पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया।
1: अच्छा।
2: और उसमें भी उद्यमी जो व्यवसायी लोग हैं, वो जो छोटे व्यवसाय जिन पर कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, तो ये मुद्रा लोन एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए ही फोकस्ड करके ये बनाई गई थी।
1: अच्छा, ये तो छोटे उद्यमी की आप बात कर रहे हैं, किस प्रकार के छोटे उद्यमी? इसमें कौन कौन आते हैं?
2: छोटे उद्यमी दैट मीन्स कि ये आपके चाय बनाने वाले भी हो सकते हैं, सब्जी बेचने वाले, या फिर दुकानदार, जो छोटे दुकानदार जो अपना व्यवसाय जस्ट शुरू किए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिनको पूंजी के अभाव में अपना बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ऐसे व्यवसाय। और इसमें ऐसे व्यवसाय भी हैं जो सालों से कर रहे हैं लेकिन उनको और पूंजी की आवश्यकता है, लेकिन वो अपने व्यवसाय को और आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इस तरह के सभी तरह के लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो सब इस चीज के लिए एलिजिबल।
1: अच्छा, तो क्या ये जैसे राशन दुकान है, या चाय घुंडी के साथ साथ जो सुबह ठेला गाड़ी लेके चलते हैं या शाम को, या साइकिल दुकान खोलना चाहता है, या कंप्यूटर, ये सारे के सारे इसमें आते हैं?
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्रा स्कीम में सारे जो भी अपने बिजनेस जो कर रहे हैं, ये सारे मुद्रा स्कीम में आप क्लासिफाइड हो सकते हैं। तो मुद्रा स्कीम में आप 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंक से ले सकते हैं, तो ये आपके अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसमें ऋण ले सकते हैं। आप बैंक जाइए, आपको कितने की जरूरत है उस हिसाब से बात कीजिए, वो आपको प्रोवाइड करें।
1: अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत जो बैंकों की जो अपने अपनी सुविधाएं हैं, जो इसमें कितने प्रकार के कैटेगरी किए गए मुद्रा बैंक में?
2: ये मुद्रा में भी दो तीन कैटेगरी जैसे ना है ना, जैसे 50,000 तक के लोन है तो उसमें मुद्रा शिशु में वो आते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, उसके बाद 50,000 से 5 लाख रुपए तक का भी एक प्रावधान है, जिसमें वो उसको हम लोग ने किशोर में किया हुआ है, और उसके ऊपर 5 से 10 लाख रुपए तक के लोन वो तरुण में आते हैं।
1: अच्छा, यानी शिशु, किशोर और तरुण, ये तीन प्रकार?
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप अपने जरूरत के हिसाब से बैंक में जा सकते हैं। जैसे आपने बिजनेस शुरू करना ही है, कोई भी नया व्यवसाय एकदम आप स्टार्टिंग पहला कदम ले रहे हो, तो आप 50,000 रुपए तक का लोन के लिए आवेदन दे सकते हो। आपको बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम के लिए वो लेना चाह रहे हो। आप जाइए बैंक में, हम ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो ठीक है, बैंक इसी काम के लिए है, आप लोग का मदद करने के लिए वो करेंगे आपको।
1: अच्छा, इसमें और एक जानकारी दीजिए, क्योंकि यदि 50,000 का कोई लेना चाहता है तो क्या उसके लिए अपनी दुकान चाहिए, या भाड़े पर, या लीज पर, या किस प्रकार का उसको?
2: देखिए, ये 50,000 तक का जो लोन है, इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर है तो लेकर के आ सकते हैं, और मिल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा दुकान शुरू किया है,

0: मुझे 50,000 रुपये तक की पूंजी की आवश्यकता हो रही है, तो वो उसके लिए 50,000 रुपये तक के लिए उतना बेसिकली ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बस बैंक के अधिकारी एक बार आपका जहाँ पे दुकान है या फिर आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, एक बार देखने जाएंगे, उसके बाद आपका लोन तुरंत हो जाएगा।
1: अच्छा, ये तो बहुत सारे बैंकों को या बहुत सारे बैंक अभी ऋण दे रहे हैं, तो इसमें जो मार्जिन मनी या सिक्योरिटी मनी की बात आती है, क्योंकि हमारे जो गरीब वर्ग हैं, जो बेरोजगार हैं और नए नए आते हैं, तो उनको इस बात का डर लगे रहता है कि कहीं हमें, मेरे पास उतना मार्जिन मनी नहीं है या सिक्योरिटी मनी, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, इसीलिए लोग बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। तो इस ऋण में इस प्रकार के मार्जिन या गारंटर की कोई प्रावधान नहीं है?
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप देखिए बहुत कम मार्जिन में आप इस तरह का लोन ले सकते हो। 50,000 रुपये तक के लोन के लिए सबसे कम 5% मार्जिन लगता है, जो ये मुद्रा लोन के लिए है। तो आप इसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, 50,000 रुपये बैंक आपको देगी। आप पहले कोई अपना बिजनेस करोगे तो उसमें 5-10 हज़ार रुपये आप लगाओगे ही, तो आपका मार्जिन में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो
1: अच्छा,
0: 50,000 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना?
1: और ये जो 50 से 5 लाख तक का,
0: हाँ, तो ये देखिए मुद्रा लोन में आपको दो तरह की फैसिलिटीज मिलती है। बेसिकली 50,000 तक में हम लोग सावधि लोन, जो टर्म लोन बोला जाता है, एक अवधि के लिए आपको लोन दिया जाता है, उसी अवधि में आपको लोन चुकाना होता है,
1: चुकाना भी पड़ता है।
0: हाँ, लेकिन जो 50,000 से ऊपर तक के वाले लोन होते हैं, 50 से 5 लाख तक में, आपको कुछ मशीनरी खरीदने हैं, जैसे आप कोई मशीन लगाना चाहते हो, उससे कुछ सामान बना के उसको बेचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टर्म लोन मिलता है। उसके लिए आप मशीन जो खरीदना चाहते हो उसका कोटेशन लेके आइए, है ना? या फिर आपका दुकान ही है तो दुकान में आप पहले से चल रहा है, कुछ सामान चल रहा है, तो उसके लेन देन के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा, जो बेसिक हमेशा ज्यादातर वो जो दुकानदार वगैरह है वो ओवरड्राफ्ट सुविधा लेते हैं, तो ये दोनों सुविधाएं हैं। तो उसके लिए आपको कोटेशन चाहिए अगर टर्म लोन के लिए, तो आप सिंपल सा है कि आप जो सामान खरीदना है उसका, जो दुकान से आपको लेना है वहां से लेके आइएगा, उसके बेस पे आपको तुरंत फाइनेंस हो
1: अच्छा, इसमें जहां आप सामान की बात कहें तो हमारे इस क्षेत्र में जैसे ककून है, धागा करण का है, तो उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। और यदि हम गांव की ओर जाएंगे जहाँ बेरोजगार लोग हैं, वहां पर राइस मिल या चावल मिल या तेल मिल है, तो क्या इसे जो 5 लाख से जो आपका 5 लाख तक जो है, क्या इसमें ये आ सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए आपका जरूरत के हिसाब से इसमें आपका कैटेगराइजेशन किया जाएगा। अगर आपको 10 लाख आपका कुछ मशीनरी लगानी है, उसका दाम अगर 7 लाख या 8 लाख रुपया है, तो आपको तरुण में, आपको मशीन तरुण में क्लासिफाई करके मुद्रा लोन दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें भी मुद्रा लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें मशीनरी खरीदने के लिए आप ज्यादा अमाउंट का भी ले सकते हो, कम अमाउंट का भी ले सकते हो, आप अपने जरूरत के हिसाब से यूज करें।
1: अच्छा, तो और एक जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को, यदि मशीनरी की बात आती है तो क्या इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ती है कि साल में मेरा इतना इनकम होगा, हम चुका पाएंगे, इस प्रकार की कुछ प्रावधान है इसमें किस प्रकार का?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जब 5 लाख रुपए से ऊपर का कुछ लोन लेने जाते हो, तो आपको आपके यहाँ कम से कम आपका आय, आपने पहले से कमाई किया होगा, आपने पहले से काम कर रहे हो, तब आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए इतना थोड़े ज्यादा अमाउंट का ले रहे हो, तो उसके लिए जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न, जो आयकर हम लोग भरते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। मैं इस पे थोड़े जोर देना चाहूंगा, जो भी हमारे व्यवसाय कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, लोग सालों से व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोग अच्छा कमा भी रहे हैं, लेकिन वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो जिस वजह से ना इनको जब बैंक जाते हैं ये लोग, तो उनको ये दस्तावेज मांगा जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम हम कैसे, आप कितना कमाते हो वो हम कहाँ से पता चलेगा। तो इनकम टैक्स अगर आप फाइल करते हो तो वो एक कह सकते हैं कि आपका एक दस्तावेज बन गया कि हाँ मेरा इतना साल का कमाई होता है, और इसी से हम आप खुद से जो लोन लेंगे तो इसी से हम चुकौती करेंगे।
1: अर्थात ये जो इनकम टैक्स है, मतलब आय ज्यादा ना होते हुए भी हमको चुकाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना, जैसे अभी हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये निर्धारित की है, तो हमें अपना इनकम टैक्स बिल्कुल चुकाना चाहिए, और उसे अपने हर साल अपने दस्तावेज में रखना, जमा करते जाना चाहिए। इससे ये होगा कि आप कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ा लोन लेने के, तो आप बैंक में जब जाइएगा तो ये पेपर्स हमेशा आपके यहाँ रहेंगे, और आपको लोन लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये बड़े लोन के लिए, आप अगर आप छोटे लोन लेना चाहते हो 50,000 1,00,000 इस सब में इन दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: अच्छा तो इसमें और एक, क्योंकि बैंकों में तो जनता की अपनी पैसा जमा हुआ रहता है, तो इसमें चुकौती का जो प्रावधान है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस प्रकार की रहती है?
0: रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए RBI डिसाइड करती है तो, लेकिन वो भी बहुत कम ही रहता है, जैसे 8 से 9% के बीच में ही रहता है MSME मुद्रा लोन्स में। तो बेसिकली जो RBI का जो एक वर्ड है RLLR, उसका जो बेस रेट है उस पे जो जो लोन लेने वाला आ रहा है बंदा, वो पहले वाला उसका लोन चुकौती का हिस्ट्री वगैरह देखा जाए कि ये पहले इन्होंने लोन लिया किस तरह चुकाया नहीं चुकाया, उसके आधार पे वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके दिया जाता है, मतलब बहुत कम रेट पे आपको लोन मिल जाएगा।
1: और तो ये चुकौती का पीरियड कितना तक होता है?
0: चुकौती देखिए मुद्रा लोन में आपका सबसे ज्यादा से ज्यादा 84 महीनों के लिए होता है, 7 साल के लिए।
1: अच्छा।
0: लेकिन वो आपके सुविधा के अनुसार आप ले सकते हैं, अगर आपने 50,000 का लोन लिया तो 3 साल में आप चुका दीजिए, आपने 5,00,000 का लिया है तो आपको थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए आप 5 साल या 7 साल ले सकते हैं।
1: अच्छा, इसमें मतलब छूट है? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि
0: तो ये साल सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको 7 वर्ष का समय मिलेगा।
1: अच्छा, तो इसमें और एक जानकारी दीजिए कि बहुत सारे जो हमारे जो श्रोतागण है उनको लगता है कि मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, उनकी हमेशा दुविधा स्थिति में रहते हैं, तो इसमें कौन कौन से ले सकते हैं, ऐसे क्या प्रावधान है, कौन से ले पाएंगे इसमें?
0: बिल्कुल, ये ऐसी चीज है ना कि सबसे पहले तो जो नए व्यवसायी जो अपना बिजनेस करना स्टार्ट तो कर रहे हैं वो रोज रात में सोचते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है लेकिन इसके लिए मुझे पूंजी की जरूरत है, तो बैंक आने से हिचकते हैं कि मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप एक बार बैंक जाइए, जिस बैंक में आपका खाता है आप वहाँ जाइए, एक बार वहाँ के जो भी लोन अधिकारी से मिलिए, उनसे बात कीजिए कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ सर, मुझे क्या क्या दस्तावेज लगेगा या फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सजेस्ट कीजिए, वो आपको सही रास्ता ही दिखाएंगे और आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। तो पहले आप बैंक पहुँचिए, बैंक आपके लिए बैठा हुआ है, आप जो भी सहायता आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको आपके अनुसार आपको दिया जाएगा।
1: तो इसमें बहुत सारे जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर है कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए रहते हैं, कुछ कंपनी के रूप में भी बनाए रहते हैं, तो इसमें कौन लोग ले सकता है, साधारण से साधारण आदमी भी, क्योंकि फार्म है, कोई NGO है, कोई ट्रस्ट है?
0: आज की डेट में अभी जो हमने बात की स्पेशली मुद्रा लोन के लिए, तो इसमें 10,00,000 तक का लोन हर कोई मुद्रा में क्लासिफाई हो जाएगा। इसमें एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है वो ले सकता है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म वाला जिनका करंट अकाउंट या जो दुकान चला रहे हैं जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो ले सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हुआ और एक छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो भी ले सकती है, लेकिन उनका वही कंपनी है तो फिर भी उसका 10,00,000 रुपये के अंदर में शुरुआत के समय में उनको 10,00,000 रुपये तक का ही मिलेगा। ठीक है।
1: अच्छा, तो इसमें और एक जानकारी दीजिए कि आज के समय में जो जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है और खेत खलिहान भी कम हो पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो हमारे युवा जो आगे आना चाह रहे हैं उसको आप क्या सलाह या सुझाव देना पाएंगे, कितने बड़े के लोन का कौन से अमाउंट पर शुरुआत करना चाहिए?
0: मेरा यही कहना है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज के वक्त में जो हम एक सरकारी नौकरी या फिर कोई प्राइवेट नौकरी का भी जो हम 9 से 5 वाला जो समय का ये बात करते हैं कि एक चेयर पे बैठ करके हम लोग काम करेंगे, ये अवेलेबल नहीं होती है, हो पाती है। सरकारी नौकरी में भी गिने चुने लोग ही उस पद तक पहुंच पाते हैं, बहुत सारे कुछ अभाव की वजह से नहीं पहुंच पाते। तो बिजनेस ऐसा चीज़ है कि आप इस चीज़ पे हर कोई घुस सकता है, आपको अपनी जीविका तो आगे बढ़ानी है तो उसके लिए आपको बिजनेस करना है, तो इसमें हर तरह के लोग इसमें अपना मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक विजन बना के चलिए कि हमको शुरुआत 50,000 रुपये से करना है, एक ही बार में लंबी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। वो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जितने ऊंचे छलांग मारिएगा उतनी जल्द ऊंचाई से नीचे गिरेगी।
1: अच्छा, गिरने की संभावना है।
0: इसीलिए आप छोटे कदम से शुरुआत कीजिए, 50,000 से शुरुआत कीजिए। आप एक साल में हो सकता है 50,000 का आपने लिया, अच्छा काम किया आपने, तो 1-2 साल में आपने चुका दिया उसको, फिर उसके बाद आप आगे 5,00,000 तक का पूंजी के लिए आप उसके लिए मतलब जा सकते हैं बैंक के पास, तो बैंक आपका हिस्ट्री देखेगा कि आपने अच्छा से लोन का चुकौती किया।

0: 5 लाख भी आपको इजीली मिल जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो।
1: हाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री वर्तमान समय में उनका एक कॉन्सेप्ट रहा होगा कि नए लोग जो बिजनेस करना चाह रहे हैं लोगों को और भी रोजगार दें, क्योंकि आज के समय में जो हम वैश्वीकरण के युग में प्रवेश कर चुके हैं तो लोगों को रोजगार देना भी जरूरी है, और केवल सरकारी जॉब से तो लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन बिजनेस ऐसा कदम है या व्यवसाय ऐसा कदम है कि हम अपने साथ साथ में 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं।
0: तो वही चीजें वही है, भारत सरकार ने एमएसएमई एक योजना बनाई हुई है, तो एमएसएमई एक फर्म है, उसमें लोग अलग अलग मतलब उनका व्यवसाय का कैटेगराइजेशन उसमें किया गया है, तो इसमें मुद्रा जो होती है स्पेशली माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, माइक्रो में भी हम 10 लाख रुपए तक के ही मुद्रा में लेते हैं, तो आई थिंक 10 लाख रुपए बहुत अच्छा अमाउंट होता है आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस दैट मीन्स कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, तो उसमें आप अकेले काम नहीं करोगे, आपके साथ 10 लोग और काम करेंगे, तो और 10 लोगों को भी रोजगार सृजन हो रहा है। तो इस मुद्रा योजना को मेन चलाने का मेन रीजन भी ये रहा कि इससे जो व्यक्ति है उसका भी रोजगार बढ़े, वो अपने साथ 2 या 4 लोगों को भी उनको भी रोजगार दे सके।
1: अच्छा, जानकारी और एक दे दीजिए अंतिम समय में कि वर्तमान समय में गांव-गांव से लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, खास करके युवा जो चेन्नई हो या मद्रास हो या गुजरात हो ऐसे जा रहा है, तो क्या हमारा जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से उन बेरोजगारों को एक सशक्त जीवन शैली अपनाने में या उनको रोजगार देने में काफी कारगर मदद कर सकती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पेशली इन्हीं वर्ग को फोकस करके ये मुद्रा योजना बनाई गई है, ताकि लोग अपने जगह को ना छोड़ के जाए, वो जाए जहाँ भी जाए और वहाँ जो जा रहे हैं वहाँ पे दिन रात उन लोग का मेहनत करना पड़ता है अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर, तो इस चीज़ों से लोग बचे इसीलिए मुद्रा योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हर कोई अपने एरिया में शुरुआत तो करे, कहीं से कुछ भी कोई भी काम से शुरुआत करे तो आगे सफलता को मिलेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो बैंक के साथ जुड़े रहना है, उनको आपका जो जरूरत है उस हिसाब से बात करना है, और ये काम एक दूसरे के साथ मिलके ही किया जा सकता है, अकेले कुछ नहीं होता है, तो कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पे भी आपका खाता हो आप वहाँ बैंक में जरूर जाएं और इस बारे में पूछें आप, तो वो आपको जरूर मदद करेंगे आपके बैंक में।
1: सर, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और सरल शब्दों में जानकारी दी, हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का जो मकसद है सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना एक सार्थक साबित होगी। आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो किसान भाई बहनों, अभी हम मिल रहे थे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना पर आधारित एक भेंटवार्ता पर ज्योतिकांत पिंगवा जी के साथ, और इसी मुलाकात के साथ ही आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप कमलेंदु को और
3: सुरेश को दीजिए विदा।
2: जोहार।
3: जोहार।

0: नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। दुमका में आज हूल दिवस के अवसर पर पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप बलमोचू सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर बलमोचू ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य संथाल समाज को हूल आंदोलन के इतिहास, उसके आदर्शों और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर साहिबगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: chikibu ayam ten teikina na a during jenti pare na tekne juri ku ta e te chi abu chili ke te ayar pas sentia tur kara kachige enne age chide ho ko esupur e dinga depenga teikina lo waria dinga depenga sungel do bano chi uderia dinga depenga sungel do bano ओते हसरी दिंगा दिपिंगा जी रो इटालिकन ज्ञान तकलीफ को हो बजना जी समाज रिया उदेरिया तकलीफ को बजना दिसुम रिया तकलीफ को बजना राय रिया तकलीफ को बजना इनकना करो ऐसे पूरे दिंगा दिपिंगा तय किना इन्ह में दिया आते सीधे हो को अकुआ वा अधूर मिसी कोई जी होनेरा वा raka chakare esukure ko lagatingken teikina chili kete ilabu ayum liya kulan red ki nen disumren nyamu diperen ho kuwa chili ken ektir jagartna ki Chandra Bhushan Deogam tehin
1: radio re anya jagar aimetan dular haga ondo misi rako jagar aime ayarte anj Chandra Bhushan Deogam ajuar telaipe मेन तो ओकोन विषय रे बु जागा रे इन जागार एटे ए आयरते आपे साबिन को तारे गोहारे तेना ची एला अब वो एन महान हाड़ाम हो को दुड़ूम हो को बु उड़ू कोआ जुआरा कोआ ओंडो अकोआ जीवनो ते बु एतोना ची हागा मिसी को लागित बोंगा बुरो को लागित ओंडो अपना दिसुम लागित चिल का जीवन एमोआ चिल के मायोम लिंगी हुआ साबिन जी जीवन को अपना जीवन रिया बोरो जी मोह दशा बिकुए ते लाना ते टाइने सारी जी का मैं तो चिलकन जीवन तेन को अबुआ एन पुरखा को टाइकिना ओकन कुछ अपना जीवन रिया एंगा आपु होन बुड़ी रिया चिंता बागी केते हागा मिसी को लगित बोंगा बोरु को लगित ओंडो अपना दिसुम लगित जीवन को एम केड़ा एन हो को साधारण हो को दो काको टाइकिना एना में ते एन को सामागे हो दो काको मेता को टाइकिना एन को लड़का हो को मेता कोआ संसार रे मोटा मोटी अबु आपिये रकम हो को माने मानवी हो को मिना बुए प्रथम दो एन महान हो को ओकन को जी अपना जाति समाज बिरबुरु दिसुमुंडो संसार रेया बुगिन लगीद के को उड़ूए पैटिए आकुआ जीवन एटा आकुआ लगी टाइने अंडो एटा आकुआ बुगी लगीद आको जीवन जाके एमेरे काको उसेना दूसरा रकम हो को साधारण हो को ओकोन को साधारण रूप ते आपन अंडो आपना कुटुम होन बुड़ी कुआ बुगिए जोकाए को उड़ू बिटाया अंडो तीसरा रकम हो को आपना सुकु अंडो रासा सुमत को उड़ू बेटा दिए उरी मेरम जिसीम सुकुरी को लेकर ना आबू बुजागा प्रथम रकम एन महान हो को विषय रे ओकन कुछ आबुआ समाज बोंगा बरु ओंडो दिसुम लगित दिसुम रेन हो को आजादी लगित को लगाते इनकेना ओंडो एना लगित अपना जीवन जगेर को एम केड़ा इन लेकान महान हो को स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर शहीद को मेता को दिसुम रिया इतिहास रे नेलकान महान हो को नुतुम सामोम रिया अक्षर रे ओलाकान गे टाइयो को मेने आको नुतुम सिंगी चांडो इपिल लेका जाचुई लोगे जिलेब जलोबेना अबु हो का जी ची भाषा रिया लिपि ची ओल काटाइकिन तेगे अबु शहीद उनका स्वतंत्रता सेनानी को नुतुम आट इट किड़ा दिसुम रे आजादी लगित लगाते इनकेन एन महान हो को ना दो समागे हाड़ाम को दुड़ुम को मेनते के वो उड़ू को तना भारत रे इतिहास रे 18वीं शताब्दी तलामला नो दीपलंग एसु रे रे पे मापा गोपे लूट खसोट रे समय टाइकिना गोटा भारत दिसुम रे देसी विदेशी लुटेरा को आपंदा पाई रे रे पे तान रे को टाइकिना हुड़िंग मरंग राजा रजवाड़ा को विदेशी को सामना मियत चनब मियत को लासुर इडियाना और सन 1818 तीसरा आंग्ल मराठा लड़ाई चनब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा भारत रे साबिक हुए थे पे अन सत्ता की सरकार रे बयीन इन लेकान दिपलंग सिंहभूम रे लड़का हो को स्वाधीन को टाइगिन लड़का हो को अनेन दिसुम एन दिपलंगो टेरा इन कॉग्निटा मने अज्ञात प्रदेश को मेता टाइगिन लड़का को आकुआ दिसुम ची क्षेत्र रे एटा अजान को काको बोलो इचिए को टाइगिन नेन ऐतिहासिक तथ्य को आबुगे ओलताडा ची चका तेबु बाईते कहानी दुकातना आयर काजी कर लेका आबु मते लिपिगे काटाइगिन नेन काजी को दो आको अंग्रेज इतिहासकार ओंडो आकोआ अफसर को ओलता रिकॉर्ड ओंडो आको आको रेको ओपोल केन सरकारी चिट्ठी साकाम कोरे ओलाकना आको ओलता अनुसार बाहरी हो को लड़का हो को दिसुम रे बोलोतिया को उड़ू ले रगे बोरोते कुला उंडू रे बोलोतिया काजी लेका को उड़ू बिटाय टाइकिना माने बाहरी हो को हो दिसुम रे बोलोतिया के काको बोरसाय टाइकिना मोहेसी लेका हथियार बंद सिपाही को जैकेट सराय किले ते बामन घाटी सेनो लगी मूली होरा बागे ताए ते सिंगी ओल पा 20 मील रिया बिन्यूर होरा को सबेटाई किना चिकन रिया ची लड़का को दिसुम रे चंडांगे तिया माने के गोनो एटाई किना अपना आजादी साहित्य बे लगी लड़का हो को पे ओंडो कुरकुर बिसे रे ओकन को गे आदान ची आयुमर टाई किना इनको चुइलो नाय एंथिया काको बोरसाई टाई किना मेन दो पोड़ाहाट राजा को लड़का हो को काबू लगी प्रथम बार सन 1767 रे ओंडो दूसरी बार 1809 रे ओंडो तीसरी बार 1818 रे ईस्ट इंडिया कंपनी ताए ते फौजी दिंगा को आसी लगी को दरखास्त किडा आखिर 1 फरवरी 1820 रे ईस्ट इंडिया कंपनी ओंडो पोड़ाहाट राजा को लोते मियत समझौता हो बयान इन समझौता अनुसार ते पोड़ाहाट राजा ईस्ट इंडिया कंपनी अधीन ते मनाते किडा ओंडो कंपनी सरकार लड़का हो को काबू को लगी देंगा एमेतिया मनाते ही ना मैं तो नैन समझौता होबाओ आयर थे हो मिस पोड़ाहाट रेन राजा ओंडो चुटिया नागपुर रेन राजा द्रीपनाथ सहाय सेना को लो लड़का हो को अपना आज़ादी लगी को लड़ाई की ना ओंडो राजा की है सेना को हर गोसे के कोटाई की ना इन चनाब सन 1770 रे चुटिया नागपुर रेन इन समय रेन राजा जगन्नाथ सहाय सेना को बुगी तो बुगी को हराव गेट कोटाई की ना इन चनाब ऐसु सिरमा हो गए लड़का हो को ता जान को काको नाय ना ऐर जागार कर लेगा फरवरी 1820 रे ईस्ट इंडिया कंपनी ओंडो पोड़ाहाट रेन राजा घनश्याम सिंह लो ते समझौता हो बयाना इन चनाब परिस्थिति बदले है ना मार्च सन 1820 रे कंपनी सरकार रेन मेजर रफसेज तोपखाना मापा सदम सेना पैदल सेना को मियत बटालियन लोते अटजोंडिया पीड़ रिया राजा वसा हतुहरा लड़का दिसुम रे बोलोयना कंपनी सरकार फौजी तैयारी नेल के तेगे तुरंग लड़का को इन सोंगे के दो जाना और काको चिके किना हापाते को बोलो चियर कुआ मैं दो चिल्के के मेजर रफसेज आया फौजी को लो गुमड़ा पीड़ रे बोलोया ने ते चाय बसरे आया छावनी बाइकिड़ा इनका के लड़का हो कुआ हमला एटेयन अंग्रेज कंपनी को फौज को तारे टाइकिना तोपखाना घुड़सवारी दस्ता बरकंदाजी माने बंदूक सेना ओंडो लड़ाई तिया नामा है तो ओंडो सखत अनुशासन ओंडो लड़का को तारे टाइकिना मुनु काड़ो तिया एन पापारी सारा सारगे मेंदो लड़का को तारे टाइकिना स्वतंत्र ची आजाद गे टाइन तिया केटे इडिंग सनंग ओंडो जिद लड़का हो को ऐसु पूरा संख्यार को सही दिया ना मैं तो हराते ही तो कागे को मनाते ही है ना इन दिपलंग दिसुम रे आजादी लगी अपना मायोम लेंगी के जीवो नेम के पुरखा को आनु तुम काबू अदान ते के तुरंग नाओ इन महान आत्मा को हड़ाम को दुड़ुम को मैं ते के वो भूंगा आको सड़ा को तना 6 अप्रैल सन 1820 रे गमरेयर मेजर रफसेज लड़का को घेराबंदी रे फंसाओ एन टेकिना मैं तो इन हुलंग सरायकिला रेन राजा बाबू अजम्बर सिंह उकुदनंग ते रफसेज बचाव की इते संभलपुर ते पारमत हुई लड़का हो कुआ ती ते रफसेजा फौज कुआ सफाया हो बार नायना गमरिया चना पुकुरिये ओंडो चैनपुर रिया लड़ाई कुरे हो लड़का हो को गे जीत करे ना ᱱᱮᱱ ᱞᱟᱲᱟᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱛᱮᱨᱮᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟᱛᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱤᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱞᱟ ᱛᱟᱝᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱠᱞᱚᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱪᱟᱱᱟᱵ ᱜᱮ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱚᱨ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱞᱮᱯᱷᱴᱮᱱᱮᱱᱴ ᱠᱟᱨᱱᱮᱞ ᱨᱤᱪᱟᱨᱰᱥ ᱦᱩᱠᱩᱢᱟᱭᱤᱧ ᱪᱮ ᱞᱟᱲᱠᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱡᱟᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱟᱸᱡᱟᱛᱮ ᱟᱸᱡᱟ ᱠᱟᱵᱩ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟ ᱢᱤᱫᱱᱟᱯᱩᱨ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱨᱟᱢᱜᱚᱲ ᱠᱟᱴᱚᱠ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱚᱢᱵᱚᱞᱯᱩᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱷᱚᱡᱤ ᱵᱟᱴᱟᱞᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱳᱯ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱨᱠᱟᱱᱫᱟᱡᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱟᱢᱞᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚ ᱩᱨᱩᱯ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱵᱩᱲᱤᱨᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱭᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱤᱴᱤᱭᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱠᱮᱴ ᱠᱚ ᱛᱚᱲᱮ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱜ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱠᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱩᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱡᱟᱫ ᱜᱮ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱸᱥᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱲᱩᱜ ᱫᱤᱴᱟᱹ ᱥᱟᱢᱱᱟᱝ ᱞᱟᱲᱠᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱠᱟᱴᱮ ᱠᱤᱱᱟ ᱡᱟᱭᱟᱛᱜᱟᱲ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱭᱟ ᱯᱤᱝᱜᱩ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱲᱠᱟ ᱥᱟᱫᱟᱨ ᱥᱩᱵᱚᱱ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱡᱩᱵᱚᱞ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱱᱟᱠᱤᱭᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟᱴᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱟᱛᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱝᱜᱨᱮᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱠᱚᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱟᱢᱮᱭᱮᱱᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚᱪᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱡᱟᱫᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱ 1831-32 ᱨᱮ ᱮᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱳᱱᱯᱩᱨ ᱯᱟᱨᱜᱱᱟᱭᱛᱮ ᱮᱴᱮᱜ ᱞᱮᱱ ᱵᱤᱫᱽᱨᱳᱦᱚ ᱨᱮᱭᱚ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱲᱠᱟ ᱥᱟᱨᱫᱟᱨ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱭᱨᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱤᱱᱟ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱮ ᱞᱟᱲᱠᱟ ᱥᱟᱨᱫᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱠᱩᱱᱰᱩ ᱯᱟᱛᱨᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱱ ᱫᱤᱯᱞᱟᱝ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱟᱭᱤᱥ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤ ᱢᱮᱡᱚᱨ ᱥᱟᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰᱤᱭᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱚᱞᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱤᱱᱟ ᱟᱝᱜᱨᱮᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱮᱱ ᱫᱤᱯᱞᱟᱝ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱲᱟᱭᱠᱮᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱯᱩᱨᱠᱷᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱜᱮᱵᱚ ᱟᱫᱷᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱤᱱᱫᱨᱟᱹ ᱢᱟᱱᱠᱤ ᱥᱩᱭ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱵᱤᱱᱫᱨᱟᱹ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱟᱠᱤᱱ ᱩᱱᱰᱤ ᱵᱚᱭᱟᱠᱤᱱ ᱵᱟᱦᱟᱫᱩᱨ ᱠᱩᱱᱰᱩᱯᱟᱛᱚᱨ ᱫᱟᱥᱟᱭ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱟᱨᱫᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚᱛᱟ ᱥᱮᱱᱟᱱᱤ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤᱫ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱪᱟᱵᱚ ᱟᱰᱮ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮᱰᱟ ᱡᱮ 1857 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚᱛᱟ ᱟᱭᱩᱫᱽᱫᱷᱮ ᱛᱮᱭᱚ ᱮᱥᱚ ᱟᱭᱟᱨᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱩᱨᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱝᱜᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚᱞᱚ ᱟᱡᱟᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱲᱟᱭ ᱨᱮ ᱮᱥᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤᱫᱤᱭᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱝᱜᱨᱮᱡᱤ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱪᱩᱭᱞᱚ ᱵᱤᱫᱮᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱞᱤ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱟᱠᱚᱴᱟᱭᱤᱱᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱢᱩᱱᱩᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱠᱤ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱤᱨᱜᱮ ᱴᱟᱭ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱩᱨᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱞᱤᱝᱜᱤ ᱠᱮᱫ ᱢᱟᱭᱚᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱫ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮᱫᱚ ᱟᱞᱚᱪᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ
0: ᱪᱮᱫᱜᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱨ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱵᱚᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱᱟ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱵᱷᱩᱥᱚᱱ ᱫᱮᱣ ᱜᱚᱢ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱭᱟᱨ ᱵᱟᱵᱩ

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

जय हिंद बच्चों। आज के नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजो दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों आज कुछ खास है, आपको मालूम है? चलिए मैं बताती हूँ। बच्चों आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है, है ना? नशा का मतलब आप लोगों को समझ में आता है ना? बहुत बुरी आदत है ना, लोग नशा करते हैं। ये बहुत गंदी आदत है, बुरी आदत है। नशा बहुत ही बुरी आदत है ना, बहुत बुरा चीज है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस बच्चों केवल एक दिवस नहीं है, बल्कि समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने का सामूहिक संकल्प है। नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार की खुशियों और राष्ट्र के प्रगति तीनों का सबसे बड़ा शत्रु है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। जैसे बच्चों अभी हमने कहा, जब नशा, कोई भी इंसान नशा करता है तो उसका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उसके परिवार की खुशियों पर असर पड़ता है। नशा हो करके कहीं कोई गिर जाता है, दुर्घटना हो जाती है, शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, उससे परिवार को बहुत तकलीफ होती है। कई तरह की बातें होती है बच्चों। मान लिया कमाने वाला नशा कर रहा है, शरीर खराब हो गया, घर में पैसे नहीं आते हैं, घर में तकलीफ होती है। या फिर पढ़ने वाला अगर नशा करता है तो माँ बाप को, भाई बहनों को बहुत तकलीफ होती है, उसकी पढ़ाई पर असर होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बच्चों नशा बहुत ही बुरा चीज है। इससे जैसे कोई आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, इस नशे की वजह से नहीं बन पाता है। तो जैसे अभी हमने कहा, राष्ट्र की प्रगति पर भी असर पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी कहा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना, विश्व स्तर पर पूरे विश्व में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को नशे से मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को पारित एक प्रस्ताव के बाद से इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई। नशे के दुष्प्रभाव, शारीरिक और मानसिक बीमारियों और सामाजिक नुकसान के प्रति आम जनता को सचेत करना ही बच्चों इस दिवस का उद्देश्य है। दुनिया भर की सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और समुदायों को एक साथ मिलकर नशा मुक्ति के प्रयासों को मजबूत करना चाहिए, ताकि कोई भी नशा से दूर रहे। नशे के शिकार लोगों को कलंकित करने के बजाय सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी अगर नशा कर रहा है उससे किसी को बेइज्जत नहीं करना है, किसी को कलंकित नहीं करना है, बल्कि उसे समझाना है, सहानुभूति दिखानी है, उसे सही रास्ता दिखाना है और चिकित्सा केंद्रों तक किसी तरह से उन्हें पहुंचाना है या मदद करनी है उनकी, है ना? यदि आपका कोई परिचित नशे की लत से जूझ रहा है तो सहायता के लिए सरकारी और प्रमाणित प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर
14456 पर कॉल करके मुफ्त परामर्श और नज़दीकी पुनर्वास केंद्रों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से नशा मुक्ति कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की वेबसाइट पर भी सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो बच्चों, किस तरह से हमें यहाँ से इस नशे से मुक्त पूरे विश्व को करना है, और आपकी हमारी सहभागिता, सबकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। तो यही आज का अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस का को मनाने का अर्थ है बच्चों, उद्देश्य है। तो सबको मिलके इस पर आगे बढ़ना है, काम करना है ना। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, कुछ जानकारियाँ लेंगे और एक खूबसूरत सा गीत भी सुनेंगे।

0: नई राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आरती थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है लोग आउ का जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नंबर सुन पा ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे भक्त तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: विक्रम बुरन सिंह तमसा है अनुता तमसा है भूरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुरा में ना है वापा में रुए तपा में रुए वाह बेटा निकला
6: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन को मुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं बुरुड़ी ने बागिया तो कि मैं मुनास से यार सी कोलो पुलिस कोलो इन्हें लड़ाई चलाओ तो मैं बुरुड़ी ने गया तो जाए तेरे काका भी वो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
7: अलग मुनि सुरंग तेरे आप ही लेकर नलिंग सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन रहते ससन का है वो आगे बिठा हुरा इनका
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक

0: उसी लोन से? नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
1: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
0: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
0: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
1: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: चलिए जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, या प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसी कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जाता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहाँ बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष या तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय 3 तल्ला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचनार्थ जारी। हमने जानकारी ली बच्चों मिशन वात्सल्य योजना की। चलिए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी आपको अच्छी लगे तो किस पर आप बताइएगा, मुझे खत जरूर लिखिएगा। और हमारा पता है नन्ही दुनिया द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चायवासा, पिन नंबर है 833201। चलिए मैं एक कहानी बताती हूँ। आपने चेतक का नाम सुना है बच्चों? इतिहास में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम हर कोई जानता है, लेकिन बताइए क्या आप उनके साथ उस साथी के बारे में जानते हैं जिसके लिए मुगल बादशाह अकबर भी दीवाना था? उसका नाम था राम प्रसाद, महाराणा प्रताप का वीर और वफादार हाथी। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद ने ऐसी बहादुरी

बहादुरी दिखाई कि कहा जाता है उसने अकेले ही मुगल सेना के कई युद्ध हाथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी ताकत और युद्ध कौशल की चर्चा इतनी दूर तक पहुंची कि अकबर खुद उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। युद्ध के दौरान रामप्रसाद को पकड़ने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। आखिरकार वह मुगलों के हाथ लग गया और उसे आगरा ले जाया गया। बताया जाता है बच्चों कि अकबर ने उसका नाम बदल कर पीर प्रसाद रख दिया, लेकिन राम प्रसाद ने अपने स्वामी से बिछड़ने का दुख नहीं भुलाया। कई ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार खाना पीना तक स्वीकार नहीं किया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध हाथी की नहीं है बच्चों, बल्कि उस वफादारी की है जो इंसान और पशु के रिश्ते को इतिहास में अमर बना देती है। चेतक की तरह राम प्रसाद भी मेवाड़ की वीरता और निष्ठा का एक अमर प्रतीक है। हम सिर्फ चेतक के बारे में जानते हैं, चेतक के बारे में हमने पढ़ा है, जाना है। आज से बच्चों आप राम प्रसाद के बारे में भी जानेंगे। और ये ऐतिहासिक कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते एक प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ बच्चों आज का हमारा नन्ही दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको हम ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, शोध की सफलता किसानों की आय बढ़ाने से तय होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2024 तक की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। दुमका में कांग्रेस की ओर से निकाली गई हुल दिवस पदयात्रा। संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, आदर्शों और अधिकारों से जोड़ने पर जोर। और CISCE जोनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय झारखंड के किसानों की आशाओं और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने लैब टू लैंड पर जोर देते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान की सफलता शोध पत्रों से नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव से मापी जानी चाहिए। राज्यपाल ने बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और लाख उत्पादन में संभावनाओं का जिक्र करते हुए छात्रों से जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती तक देश के अग्रणी कृषि संस्थानों में शामिल होगा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में राज्य सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को रांची के टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में आयोजित समारोह में 1042 चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल एक दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में दोपहर 1 बजे आयोजित एक विशेष सेमिनार में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सेमिनार का विषय आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के संदर्भ में डॉ भीमराव अम्बेडकर का समग्र दृष्टिकोण रखा गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और समावेशी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, परमाणु अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। झारखंड अधिविद परिषद जैक ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। पहले इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी। परिषद के अनुसार ये सुविधा प्रारंभ से लेकर वर्ष 2024 तक आयोजित जेएसी की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी। छात्र छात्राएं पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र सहित अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि तथा अन्य त्रुटियों के सुधार के लिए निर्धारित अवधि तक आवेदन कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका में आज आदिवासी कांग्रेस कमेटी की ओर से हुल दिवस पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप बलमुचू सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर बलमुचू ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, उसके आदर्शों और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के नमस्कार केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और विधिवत पूजन किया। पूजा के बाद श्री सिंह ने देश में अमन चैन, किसानों और मजदूरों की समृद्धि तथा बिहार झारखंड सहित पूरे देश की खुशहाली की कामना की।

0: रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी के पास देर रात एक सवारी वाहन और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को रिम्स रांची रेफर किया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क जाम रही, जिसे प्रशासन के आश्वासन के बाद हटाया गया। आसू नेता पीयूष चौधरी ने कहा कि इस स्थान पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं।
1: आज लगातार तीसरा दिन हादसा हो रहा है। कल 4 लोग मरे थे और लगातार एक एक दिन छोड़ के यहाँ पे हादसा होता आ रहा है। आज हमेशा से हमने प्रशासन को, अपने यहाँ के बारलों गांव के पब्लिक ने प्रशासन को कोऑपरेट किया है कि भाई रास्ता ना रोका जाए, निकला जाए। लेकिन
0: मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्र के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। झारखंड में आज मौसम आंशिक रूप से धूप वाला और उमस भरा रहा। हालांकि राजधानी रांची सहित कुछ इलाकों में आंधी के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 28 जून से पूरे झारखंड में मॉनसून फिर से पूरी तरह सक्रिय होने का पूर्वानुमान है, जिससे कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा में आयोजित CISCE जोनल कराटे चैंपियनशिप में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक जीते। लोरेटो कॉन्वेंट की मारिया लवलीन खेस, वृष्टि मोनिका क्रिकेटा और शाइनी शिमोना टुपो ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं बिशप वेस्टकॉट नामकुम की मिस्टी कुमारी और बिशप स्कूल बहुबाजार के प्रीत सोनी ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने कहा कि अब खिलाड़ियों को बिहार में होने वाली रीजनल कराटे प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, शोध की सफलता किसानों की आय बढ़ाने से तय होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2024 तक की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। दुमका में कांग्रेस की ओर से निकाली गई हुल दिवस पदयात्रा। संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, आदर्शों और अधिकारों से जोड़ने पर जोर। और CISCE जोनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के तत्वाधान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिरसा नगर किफायती आवास परियोजना के लाभुकों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 322 लाभुकों को मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद सांसद विद्युत वरण महतो एवं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के हाथों नए आवास की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान विद्युत वरण महतो ने लाभुकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन और पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
2: आज एक ऐतिहासिक दिन में, ऐतिहासिक समय में लगभग 300 से ज्यादा लाभुकों को आज मकान का चाबी दिया जा रहा, इसलिए देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और राज्य सरकार को सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
1: विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जमशेदपुर प्रधान डाकघर परिसर में आयोजित

0: स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डाक विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में डाक कर्मियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। डाक विभाग की ओर से नियमित रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का माध्यम है।
1: इसका थीम है इस वर्ष का 2026 का मानवता की एक बूंद जिंदगियां बचाए। तो अगर हमारे डाक परिवार के स्टाफ से ग्रामीण डाक सेवकों जो रक्तदान करेंगे उनसे अगर किसी की जिंदगी बचती है तो इससे बड़ा दिन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है।
0: जमशेदपुर के साक्षी स्थित बंगाल क्लब की आचार्य नंदलाल बोस कला दुर्गा में 3 दिवसीय सिमूल 26 चित्रकला एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 40 चयनित कलाकारों की चित्रकला और मूर्तिकला कृतियां प्रदर्शित की गई, जिनमें प्रकृति, समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान आयोजक समिति के सदस्य शुभेंदु विश्वास ने बताया कि
2: हमारी ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं ये आर्टिस्ट फोरम की तरफ से एक वर्कशॉप किया गया था साक्षी हाई स्कूल में 8 तारीख और 9 जून को, जिसमें 40 कलाकारों ने भाग लिया था। उसमें 3 स्कल्पचर भी थे जिन्होंने अपना काम किया है और उसी का जो काम हुआ है वही हम दर्शक के लिए एग्जिबिट किया जा रहा है। अभी हमारे पास 38 पेंटिंग्स है और 3 स्कल्पचर है। एक जनता का सामने में अपना प्रोडक्ट को लेके नहीं आएंगे, क्रिएटिव काम को लेके नहीं आएंगे, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हैं।
0: जमशेदपुर में नशा मुक्त भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत जिला मुख्यालय से की गई। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देगा। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:15 हो रहे हैं। आइए आप आपको सुनाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है एक था राजा। अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, संगीत है आनंद इंद्र का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, आमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद, पुंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्ष महनी महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदनी महली, साजीव महली और विजय बेसरा। चले, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म का नाम है एक था राजा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है गोपी किशन। पूर्णिमा और कुमार शानू की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा बम्बो सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्याम नायक और सीमा। ग्राम गैलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश बेसरा, अनु बनमाली बेसरा, पूजा और सिद्ध कुमारी। सेन टोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। चलिए इन सबकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म गोपी किशन का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है आपको पहले भी कहीं देखा है। उदित नारायण की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं, निखिल विनय का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बीटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। अमराटोला चाईबासा से रविंद्र कुमार सिन्हा, हर्ष राज सिन्हा और पूनम नारायण। तूरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया और अर्पिता कुमारी। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है आपको पहले भी कहीं देखा है।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआना बोले रुआन में आले परिवार से मतलब पूरे ये
3: मोर नाम मंगल राय गाँव बड़गड़ा आड़की थाना।

0: जंगल गया है तो आऊ का कहाँ मना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
1: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई नहीं हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
2: तुम लोग बुरान सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना या पाम ना रियो तपाम ना रियो वाह बेटा निका
3: अन्यान तुम लोग बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम लोग कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में बुरी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमें दुर्वन गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल में
4: अलिंग मुनि सुरें पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अली आया न तुम ते ना आप ही लेता ना
5: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
6: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, इन संदेशों के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है क्रिएचर 3D। अरिजीत सिंह की आवाज है, टोनी कक्कड़ की संगीत पर आप सुनिए ये गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा। गोला बाजार बक्सर से शुद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। कुचाई बिद्री से केपी सेठ सोए, दुर्गामती, सरिता, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना, सन्नी। ग्राम सूराबेड़ा से बासी सरदार, कमल सिंह, बीरू सरदार और अंशु। ग्राम इस गीत को सुनने वाले हैं खरसवा प्रखंड के अंतर्गत गांव उघड़िया से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, तरुण महतो, डोली महतो, कैलाश बाबा, खोत्र मोहन साहू और समस्त साहू परिवार के सदस्यगण। तो चलिए इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रिएचर 3D का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है बागी। मीत ब्रोस मोनाली ठाकुर की आवाज़ें हैं, कुमार के बोल हैं, संगीत है मीत ब्रोस का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं सराकिला पारापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंट्री, सुरुमानी मुंट्री, हीरामानी मुंट्री, हिमांती मुंट्री, डोब्रो मुंट्री, सार्जन मुंट्री, सिद्धेश्वर मुंट्री, पाड़ापुर शिवाजी, डोब्रो मुकेश, कुशल मुंट्री, जानुम सिंह मुंट्री, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफएम शिवा मुंट्री। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। छोटा नीमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक, कोमल, रोहन। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। बड़ा नीमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, मजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। इन सबकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। और इस गीत को सुनना चाहते हैं राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिपा तिवारी, कुचाई बिद्री से के पी सोए, सरिता, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना और सनी, ग्राम सूरबेड़ा से बासी सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश अंसू और वीरो सरदार, अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना, परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। चलिए, सबकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये गीत।

देखती हूँ सभी गीत आपको पसंद आए होंगे। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं फिल्म का नाम है आईना। लता मंगेशकर और दिलीप सेन, समीर सेन की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं। चलिए इस गीत को सुनना चाहते हैं। बताते हैं आपको, रेलवे रोड गजटुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी, डीएच बच्चन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची से तनु करमकर। चलिए इन सब की पसंद पर हम सुनवाते हैं फिल्म आईना का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। इसके पहले आपने सुना आई मिलन की बेला फिल्म से, की आई मिलन की रात से फिल्म का नाम था ये, और अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ें थी, समीर के बोल और आनंद मिलन का संगीत। अभी आप सुन रहे थे ऐतराज फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के बोल थे। इस गीत को सुनना चाहते थे बेली से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर। अस्तुपुरा जिला मऊ उपुर से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। रेलवे रोड गजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी, डीएच बच्चन। गांव धलाईकेला पोस्ट पदमपुर जिला सरायकेला से लक्ष्मण सोई, बिरसा सोए, राज सोए, अनिता सोए, मनीषा सोए, पूनम सोए, समस्त सोए परिवार। गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड खाटशेला से सोना रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद। चलिए, इन सब की पसंद से आपने गीत सुन लिया, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तो, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। और इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा बाबू सुपैसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्याम देव नायक और सीमा। ग्राम गेली अलोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश, अनु बनमाली और सिद्ध कुमारी। दौलतबाद बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। माहौलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, कृष्ण नायक, आयुष महतो और गीतेश महतो। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबीहा गाजीपुर देवादा से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। दंतरेगी से भागवत वर्मा। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु महतो। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ये गीत, अलका याग्निक और हिमेश रेशमिया की आवाज़ में। समीर के बोल हैं, संगीत भी हिमेश रेशमिया का है।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीकंधा यहीं संपन्न होता है। आशा करती हूँ आपको सभी गीत पसंद आए होंगे। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब आपको हम ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहाँ से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए

थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में एचएसबीसी के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि

0: आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची से प्रसारित कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गजल। तो चलिए गजलों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। उनके द्वारा गाए गए सभी गजलों का आनंद आप लें।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना जगजीत सिंह के स्वर में कुछ गजलें। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म सुहागन का ये गीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। आज आपने सुरों के रंग कार्यक्रम में बहुत से गीतों का आनंद लिया। आपको हमने सुनवाया, फिल्म का नाम था मेरी जंग, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी। उसके बाद आपने सुना फिल्म लव इन शिमला का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। लोफर फिल्म का आपने गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में। काली घटा फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। कलाकार फिल्म से आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और कार्यक्रम के अंत में आपने सुना ज्वेल थिप का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, एस डी बर्मन का संगीत था। तो श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यही संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।